एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20

0: में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।

दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर की खोज कर लेना, इसी को सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जीवन की कोई ऐसी बाधा नहीं जिससे कोई प्रेरणा ना ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं, और चाहें तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी है, अपितु इसलिए भी दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। इसी से ही अभाव में भी जीवन जीने का भरपूर आनंद आएगा।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर के मनन से करते हैं।

ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही वास्तविक भक्ति है। जब मनुष्य सांसारिक चिंताओं को छोड़कर स्वयं को परमात्मा के चरणों में सौंप देता है, तो उसे परम शांति का अनुभव होता है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 105।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सुबह 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर, जिसमें आज विशेष के साथ ही हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। इसके साथ ही पर्यटन स्थल शोघी के बारे में जानकारी देंगे और पर्यावरण के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा चकोर पक्षी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग सुनिएगा सुबह 7:40 पर और फिल्म संगीत का आनंद उठाइए प्रातः 8:30 पर। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से है विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर, और कार्यक्रम में जिस विषय पर बात होगी वो है सांसों की आज़ादी, और विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर अनुराधा। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 10:00 और 10:30 का समय है हिमाचली गीतों और लोकगीतों का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 10:45 पर, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:00 और दोपहर 12:30 पर बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल सभा। आज ये कार्यक्रम जिस विषय पर आधारित होगा वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इसके साथ ही कार्यक्रम में रोचक जानकारियां भी बच्चों को दी जाएंगी। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुना करते हैं दिन में 1:10 पर, जो कि आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाते हैं। भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर और शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। आज ये कार्यक्रम मेरी पसंद पर आधारित होगा। गजलें पेश करेंगे शाम 6:06 पर और शाम 6:30 का समय है कार्यक्रम मौजां गराइंदियां का। कार्यक्रम में नर्सरी प्रबंधन के बारे में बात की जाएगी। जल संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी देंगे शाम 7:10 पर, कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात 8:00 और रात 8:30 का समय है देशगान का। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा एक ही कलाकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे निर्माता निर्देशक लव रंजन की फिल्मों से कुछ गीत। कार्यक्रम अनुगूंज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और रात 10:00 रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यंताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीलाइंगवर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5 दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक ISI मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः 8 अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष CP अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्ण स्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्री शुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय 20-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः

मणि समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुप्रभात में आप सबका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी दोस्तों, सुबह की चाय और एक अच्छा विचार दिन की ये सबसे शानदार शुरुआत है, और अगर वो विचार प्रेरणादायक हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर क्यों छोड़ें। वैसे भी अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर दिन आपको एक नया अवसर प्रदान करता है, इसलिए खुद को साबित करने का आज की सुबह का यही मंत्र है कि खुद पर भरोसा बनाए रखें, हौसला बनाए रखें और पूरे उत्साह के साथ जुट जाएं, एक नई शुरुआत करें और एक नई सुबह का आगाज करें। तो चलिए, कार्यक्रम सुप्रभात का हम भी आगाज कर चुके हैं और एक खूबसूरत सा गीत अब आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो पहले सुनते हैं वो गीत और वापस लौटेंगे जानकारियों के साथ।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेकिन पलटते हैं इतिहास के पन्ने और बात करेंगे उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने आज के दिन को कुछ खास बना दिया। तो चलिए बात करते हैं आज विशेष की। साल 1774 में आज ही के दिन भारत में पहली बार डाक सेवा कार्यालय यानी कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को स्वीकार किया और संशोधित किया 31 मई सन 1921 को। और आज ही के दिन वर्ष 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। मुंबई में अंतिम बार साल 1964 में इलेक्ट्रिक ट्राम चलाई गई थी और भारत में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया 31 मई सन 2010 को। और आज ही के दिन भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ साल 1725 में। और श्रोताओ, 31 मई सन 2022 को प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के का निधन हुआ और करीब 3 दशक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी फिल्मों में 500 से अधिक गीत गाए और इसके साथ ही उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी 200 से अधिक गीत गाए। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं आपको, के का गाया हुआ।

जी श्रोताओं, आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर हम आप लौट आए हैं आपके रेडियो सेट पर। आकाशवाणी धर्मशाला का ये केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। और वैसे भी दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो जो भी पल मिले हैं उन्हें हमें हंसते मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। और अब बात करते हैं कार्यक्रम की अगली जानकारी की। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 31 मई का दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। और इस दिन को मनाने की स्थापना की गई WHO द्वारा साल 1987 में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को तंबाकू के सेवन में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य नुकसानों के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही जो भी बीमारियां इसे सेवन करने से होती हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाए, और साथ ही लोगों को इस जानलेवा आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। और साल 2026 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। ये थीम प्रेरित करता है उन विज्ञापनों की तरफ जो कि तंबाकू की कंपनियां चलाती हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और ये समझें कि ये तंबाकू को सेवन करने की आदत कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का प्रतीक है ताज़े फूलों से सजी हुई एस्ट्रे।

जी दोस्तों, हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश कितना खूबसूरत है ये, और यहाँ की जो प्रकृति है वो हर कदम पे अपनी छटा बिखेरती है और सभी के मन मुंह को लेती है। लेकिन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को इसीलिए पर्यटन स्थल नहीं कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रकृति अपने नज़ारों के साथ धरती पर ही स्वर्ग को दिखाती है। और हिमाचल प्रदेश में ज़िला शिमले का एक बेहद खूबसूरत सा छोटा सा हिल स्टेशन है शोघी। ये शिमला शहर से लगभग 13 किलोमीटर पहले आता है और इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। शोघी का मुख्य आकर्षण है तारा देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, और इसके साथ ही यहाँ पर हरे भरे ओक और चीड़ देवदार के जंगल भी हैं। और स्थानीय स्तर पर बनने वाले फलों के जूस, जैम, अचार, जैली और सिरप के लिए भी काफी प्रसिद्ध है शोघी। इसके साथ ही यहाँ पर कैंपिंग और ट्रैकिंग के कई ट्रेल्स भी हैं, और यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ और खूबसूरत प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। शोघी के एडवेंचर पार्क में आप रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग का आनंद ले सकते हैं। और शोघी एक बजट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और शांत हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं।

श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के बाद अब कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत और फुर्तीले शिकारी पक्षी के बारे में जो कि एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जी, पर्यावरण के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं चकोर पक्षी के बारे में, जिसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। चकोर के शरीर के दोनों तरफ काली सफ़ेद धारियां होती हैं। इसकी चोंच और पैर गहरे लाल रंग के होते हैं और इसके गले में खूबसूरत काली पट्टी भी होती है और ये सभी मिलकर इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। चकोर एक सर्वाहारी पक्षी है और ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है। पहाड़ी, पथरीली और सूखे क्षेत्रों में ये पक्षी रहता है और लोक कथाओं में चांद और चकोर को प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

जी श्रोता, और हर साल 31 मई को मनाया जाता है नेशनल स्माइल डे, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को मुस्कुराने, खुशियां बांटने और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए प्रेरित करना। और इसके साथ ही इस दिन को मनाने का एक मकसद ये भी है कि लोगों को स्वस्थ और खूबसूरत मुस्कान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। और इसके साथ ही ये दिन नेशनल स्माइल मंथ की शुरुआत भी करता है, जो कि डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन को बढ़ावा देती है।

जी श्रोताओ, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों के चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनी रहेगी। और ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और आज का सुप्रभात कार्यक्रम आपने सुना वंदना रैना के साथ। जी श्रोताओ, अब हम आपको बता दें कि कार्यक्रम सुप्रभात में आपसे अलविदा लेने का वक्त अब आ चुका है। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का अंतिम अंक और कल से एक नए कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अशोक कुमार के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 7:55 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1 रुपए

0: पचास पैसे प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
6: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
5: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The Myanmar president will then travel to Mumbai on Tuesday for business and industry interactions and site visits. Mr. Hlaing is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of Mr. Hlaing to India in his current capacity. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. More from our correspondent.
7: According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess were introduced on March 27 this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. However, the government has clarified that there is no change in the existing excise duty rates on petrol and diesel meant for domestic consumption. The revised duties will come into effect from tomorrow and remain in force for the next fortnight. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
5: The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The Election Commission has convened a national conference of Election Commission of India Councils 2026 in New Delhi to further strengthen its legal framework. Inaugurating the conference, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar said that fair rolls lead to fair polls. He also hailed booth-level officers and booth-level agents as the foot soldiers of electoral roll management. He also highlighted the high level of contestation during the recent assembly elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Skycar system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Skycast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Maharashtra, death toll in the Pune spurious liquor tragedy has risen to 21. The victims include 7 people from Pune city and 14 from Pimpri, Chinchwad and Uruli Kanchan areas. So far, 10 persons have been arrested in connection with the case. The investigation has been handed over to the Crime Investigation Department, CID. In a major administrative action, 22 officials have been suspended for alleged negligence in the discharge of their duties. Those suspended include 9 police personnel and 13 officials from the State Excise Department. Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu has announced summer vacations for all government and private colleges falling under the summer zone of Jammu Division from 1st of June to 15th of July. The minister said the decision has been taken in view of the onset of the summer season and to ensure the well-being of students, teaching faculty and college staff. The minister further informed that regular academic activities in all colleges will resume after the conclusion of the vacation period on 15th of July. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Keralam, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. In Keralam, yellow alert has been sounded in 6 districts for today. More from our correspondent.
8: 6 of the 14 districts in Keralam is under yellow alert today, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Isolated heavy rainfall and winds up to the speed of 40 km per hour is forecasted across Keralam over the next 4 days. The onset of monsoon has not yet been officially declared in Keralam. No heavy rainfall was recorded in the northern part of Keralam this morning, while the southern districts have received up to 5 mm of rain since 7 a.m. today. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
5: Moreover, heavy rainfall is also expected over Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and the northeastern parts of the country till tomorrow. IMD said thunderstorms accompanied by hailstorm are very likely at isolated places over East Rajasthan, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha today, while thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected at isolated places over Delhi, Haryana and Chandigarh till tomorrow. World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. We have a report.
9: As part of the observance in India, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava on Friday launched the pilot version of the Tobacco-Free Education Institutions application in New Delhi. The application aims to strengthen implementation and monitoring of tobacco-free norms across schools and colleges in the country. It will also facilitate self-assessment and reporting by educational institutions, monitor compliance with tobacco-free guidelines, ensure implementation of tobacco control signage, and help prohibit the sale of tobacco products within 100 yards of educational institutions. Addressing the gathering, Srivastava said that more than 2,000 tobacco cessation centers have been established across the country in hospitals, medical colleges, Ayush institutions, and other healthcare facilities. With Vishnu's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: In cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bengaluru in the final of the IPL 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. More from our sports desk.
10: With the trophy within touching distance, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru will look to make most of their strengths in the final. Gujarat Titans have beaten RCB at this venue earlier this season, but Bengaluru will draw confidence from having won their maiden IPL title at the same ground last year. RCB have enjoyed an impressive campaign and entered the final after a three-day break. Their batting has been one of the strongest in the tournament, with Virat Kohli leading the charge. In bowling department, Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood have been among the key performers with the new ball. Meanwhile, Gujarat Titans, led by Shubman Gill, secured the top two finish in the league stage and bounced back from the qualifier 1 defeat to book their place in the final. The team will once again rely on key batters Gill, Sai Sudarshan and Joss Butler, while all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. Both teams are aiming for their second IPL title. Gujarat won their maiden crown in 2022, while RCB are looking to successfully defend the trophy they won last season. With Manik Sharma's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
5: In badminton, India's men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian in the final of the Singapore Open today. The Indian pair is yet to win a title since clinching the Thailand Open in May 2024. Earlier, Sattvik Sairaj and Chirag defeated the world number one South Korean pair of Seo Jeong Jae and Kim Won Ho 21-19-21-18 in the semifinals yesterday. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Shagun. Political developments in Karnataka. CUET retest and TMC leader Abhishek Banerjee mobbed during visit to South. 24 Parganas are the front page stories in most dailies. The Statesman informs Amit Shah on a visit to West Bengal seeks close watch on radicalization centers on border. Newspapers report US Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines, India helps maintain balance of power, while the Sunday Express says no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
5: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। जी श्रोताओ, कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें दुनिया केके के नाम से जानती है, भारत के बेहतरीन और बहुमुखी पार्श्व गायकों में से एक थे और अपनी जादुई आवाज से युवाओं के दिल पर राज करते थे। और आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं केके के गाए हुए कुछ चुनिंदा गीत।

जी श्रोताओ, तुम मिले फिल्म में अभी आपने सुना केके को, और केके की आवाज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कमाल की सादगी थी। एक तरफ उनकी आवाज़ में मस्ती थी तो दूसरी तरफ उनकी आवाज़ में दर्द भी था। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए जन्नत फिल्म से, आवाज़ है केके की।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
8: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार केके के गाए हुए कुछ गीत। दोस्तों, केके की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर थे जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन जब भी वे माइक के सामने खड़े होते थे तो उनकी रेंज और उनकी फीलिंग्स का कोई मुकाबला नहीं होता था, और वे कहते थे कि वे आत्मा से गाते हैं, और यही वजह है कि जब भी वो कोई गीत गाते थे तो वो गीत सीधा सभी के दिलों को छू जाता था। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म गैंगस्टर से।

और श्रोता, अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं केके और डोमिनिक का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने और फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं और ये समय है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का। और श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम है रिकॉर्डेड और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के ऊपर विशेष रूप से ये कार्यक्रम है, जिसमें जानकारी का विषय है सांसों की आज़ादी। और इस विषय पर जानकारी देने जा रही हैं डॉक्टर अनुराधा, जो कि जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी धर्मशाला के लोकप्रिय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आरोग्य में मैं आपकी अपनी होस्ट आरजे नीलम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की ये सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी कि शायद आज कोई एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, जो शुरू होता है एक ट्राई से और खत्म होता है कई सपनों के अधूरे रह जाने पर। कभी सोचा है आपने कि जिस धुएं को आप हल्का समझते हैं वो आपके अंदर कितनी भारी तबाही लिख रहा होता है। हर कष्ट के साथ आप अपनी सांसों से थोड़ा सा समय उधार ले रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे इंसान की ताकत, ताजगी और उम्मीद तीनों छीन लेती है। और सबसे डरावनी बात यह है, तंबाकू कभी अचानक वार नहीं करता, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको अंदर से कमजोर करता है। हम अक्सर कहते हैं एक दिन छोड़ देंगे, लेकिन तंबाकू हर दिन हमें कहता है आज एक और दिन जोड़ लो। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद से एक सवाल पूछने का समय है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को धुएं में खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और सांसें उससे भी कीमती। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड नो टबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इसी बारे में कार्यक्रम में आज बातचीत होगी। हमारा आज का विषय है सांसों की आजादी, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियोज में उपस्थित हैं जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनुराधा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू से जुड़ा आज का हमारा खास विषय है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जा रहा है, क्या कुछ कारण है इस दिवस को मनाने के और क्या कुछ उद्देश्य रहता है?
1: जी, जो तंबाकू निषेध दिवस है ये 31 मई को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन,
0: जी जी,
1: इसके द्वारा 1987 में किया गया था। तो वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमें तंबाकू के बारे में कुछ करना चाहिए, इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो 1988 के ऑनवर्ड्स जो है ये दिन फिर 31 मई जो है इसको मनाना शुरू कर दिया गया तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। और इसका उद्देश्य जो है एक तो लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना जो तंबाकू के दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में, और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनके बारे में जागरूक करना, ताकि लोगों को पता रहे कि कौन कौन से कानून हमारे देश में लागू हैं जिसकी वजह से हमें इसके ऊपर नियंत्रण लाना है।
0: मतलब 1987 से इस पर चर्चा शुरू हुई और साल 1988 से इस दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया। तो आज के समय में तंबाकू का सेवन जो है ये क्या चुनौती जो है वो सामने आ रही है, क्या लगता है आप?
1: देखिए, तंबाकू का सेवन जो है वो इस वक्त एक महामारी का रूप ले चुका है।
0: जी बिल्कुल।
1: जिसका अगर आप आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो विश्व में अगर आप हर साल देखें तकरीबन 80 लाख लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवाते हैं। और यही आंकड़ा अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो भारत में भी तकरीबन 13 लाख के करीब लोग तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो आप सोचिए कि इसका बर्डन जो है हमारे विश्व पर कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। हर दिन जो है हम तकरीबन 3,500 लोगों को खो रहे हैं तंबाकू की वजह से। और इससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, एक तो होता है कि मृत्यु दर क्या है, मृत्यु कितनी हो रही है, और दूसरी बात होती है कि इसकी वजह से मॉर्बिडिटी कितनी है या लोग बीमार कितने हैं, इसकी वजह से प्रभावित कितने हैं इससे। तो आप देखिए, ये जो है कैंसर का कारण है। तो लंग कैंसर के जितने भी मामले होते हैं उनमें से तकरीबन 85-90% जो है वो उसका कारण डायरेक्टली तंबाकू निकल के आता है। ठीक है, हमारे हृदय रोग इतने हैं जिनके कारण हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं उनके कारण

0: जो है वो पीछे निकल के आता है कि ये तंबाकू का सेवन करते थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप देखिए कि बीमारियां भी बहुत सारी हैं, सांस की दिक्कतें जो आती हैं पेशेंट्स को, उनमें तंबाकू का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक महामारी की तरह है, और ज्यादा हमारा जो अब चुनौती है कि युवा वर्ग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से इस पे नियंत्रण पाना भी थोड़ा सा मुश्किल आता है।
1: आगे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर लोगों की धारणा है, लोगों का ऐसा कहना होता है कि थोड़ा बहुत तंबाकू अगर हम लेते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: पहले हम तंबाकू को समझ लें थोड़ा सा।
1: जी।
0: तो तंबाकू जब हम लेते हैं तो उसके अंदर जो है निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है।
1: जी, बिल्कुल।
0: ठीक है, ये पदार्थ है सारे फसाद की जड़।
1: जी, बिल्कुल।
0: ठीक है, तो आप जो है जब तंबाकू ले रहे हैं वो आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे उसको प्रभावित कर रहा है, वो मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त बता दूं।
1: जी, जी, जी।
0: कि निकोटीन जो है वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो विभिन्न अंगों को वो प्रभावित करे। वैसे तो कहते हैं कि बॉडी का एक भी पार्ट नहीं होता जिसको वो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो लंग्स तो हमारे सबसे क्योंकि आप जब स्मोक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो लंग्स में फेफड़ों में जा रहा है, तो लंग्स में जो इफेक्ट करेगा प्लस आपके हार्ट को जो इफेक्ट करेगा, वो जो आपके हृदय को इफेक्ट करेगा, और मिनट्स में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज सिगरेट पी, इसका इफेक्ट कभी बाद में होगा। जब आप पी रहे हैं, जब निकोटीन ले रहे हैं, उसी वक्त ये इफेक्ट देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इफेक्ट जो होता है वो मस्तिष्क पर होता है। तो ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो विद इन 7 सेकेंड्स, इतने जल्दी उसका इफेक्ट हो रहा है। तो आप सोचिए, आप एक पिए, दो पिए, तीन पिए, निकोटीन तो अंदर जा रहा है, आपके लंग्स में जितने पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, आपके गले को अफेक्ट कर रहा है जब आप गर्म धुआं वो अंदर ले रहे हैं, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, एक मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ब्रेन में जो मैंने बात की, वहाँ पे हमारा जो डोपामिन का रिलीज है उसको बढ़ाता है, वो निकोटीन की वजह से जो है ब्रेन में ज्यादा वक्त तक रहेगा, जिससे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे कहते हैं ना कि खुशी खुशी वाली फीलिंग आती है,
1: अनुभव होता है।
0: सो ये इफेक्ट तो एक सिगरेट से भी होगा, और क्योंकि ये इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से दोबारा लेने का मन करता है। तो ये कह देना कि कभी कभार लेना,
1: ये
0: सिगरेट के मामले में या निकोटीन के मामले में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी आदत लगना कहीं हद तक जो है वो लाजमी हो जाता है कि जो लेता है उसको बार बार लेने का मन करता है।
1: जो चीज हमें आनंद देती है हम उसको बार बार कंज्यूम करेंगे।
0: जी,
1: आगे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के, जो सिगरेट हम लेते हैं वो तो खतरनाक है, उसके साथ बीड़ी, हुक्का, वैपिंग, ई सिगरेट, ये सब आजकल नए नए तरीके हैं, तो ये कितना हानिकारक है शरीर के लिए?
0: तो देखिए, अब जितनी आपने नाम ली कि बीड़ी है, हुक्का है, वेपिंग या ई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो हमने अपना वो एक विलन यहाँ पे बताया निकोटीन को, ये इन सभी चीज़ों में मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊँ कि बीड़ी जो है उसमें निकोटीन की मात्रा 3 गुना ज़्यादा होती है सिगरेट से।
1: अच्छा,
0: बीड़ी के अंदर।
1: ओके,
0: ठीक है। और एक और पदार्थ होता है जब हम इन चीज़ों को लेते हैं, जब हम स्मोकिंग करते हैं या किसी भी तरह का तंबाकू हम लेते हैं, तो एक पदार्थ और होता है टार, जिसको हम बोलते हैं, जो एक चिपचिपा पदार्थ है जो जाके लंग्स में हमारे इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं ना, आपने देखा होगा फोटो में
1: कि में
0: काला लंग दिखाते हैं और एक पिंक दिखाते हैं, जो कि गुलाबी जो होता है वो नॉर्मल है, वो टार की वजह से। तो ये टार जो है, ये दो चीजें हो गई, एक तो हो गया निकोटीन हो गया जो जा रहा है बॉडी के अंदर, दूसरा टार हो गया। तो बीड़ी में अगर मैं बात करूं, उसमें 5 गुना ज्यादा टार है सिगरेट से। तो अगर हम देखें कि कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर निकोटीन और टार है, तो वो चाहे कम जाए चाहे ज़्यादा जाए, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे हमने पहले बात की कि निकोटीन जब बॉडी में जाता है तो किन किन अंगों को प्रभावित करता है, सबसे पहले पहला अंग जो होता है वो होता है मुंह, जहाँ से हम इसका सेवन करते हैं, है ना। तो मुंह में होंठ आ गए, होंठों से देन जीभ आ गई, गम्स आ गए, जो हमारा गला है उसमें जो है धुआं जो गर्म लग रहा है उससे इरिटेशन होगी, फिर वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाके हमें अफेक्ट करेगा। अब जब आप हुक्के की बात करते हैं, आपने बीड़ी पहले कहा, अब हम हुक्के की बात करते हैं। एक हुक्का जब हम लेते हैं तो उसका सेशन जो होता है, उसका सेशन चलता है तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में, तो वो ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो उस एक सेशन में आप देखिए कि वो एक सेशन बराबर है 100 सिगरेट्स के, और लोगों को ये भ्रम होता है कि हुक्के के थ्रू आ रहा है, पानी से होता हुआ आ रहा है, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं होगा। पर आप देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो गले में गर्म जाके लगता है, जब पानी के थ्रू होके आता है वो, तो वो ठंडा हो जाता है। तो आप और ज्यादा ले सकते हैं उसे, और गहराई से ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप और गहराई से उसको ले रहे हैं तो वो आपके लंग्स में वहां तक पहुंचेगा जहां तक कुछ और शायद पहुंचना। तो इसलिए ये भी, दूसरा आपने बात की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और वेपिंग की बात, तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको जो बेचा जा रहा है उसको बहुत फैंसी तरीके से बेचा जा रहा है, बहुत कूल दिखाया जा रहा है उसको, और कई जगह तो स्टेटस सिंबल भी समझ रहे हैं
1: यूथ में
0: बहुत ज़्यादा। अब आप इसमें देखिए, उनको लगता है कि इसमें जो है हानिकारक पदार्थ नहीं है, कुछ जला नहीं रहे हम, बट इसमें ये बैटरी ड्रिवन है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे निकोटीन जो है और एक और पदार्थ एक्रिलिन भी रिलीज होता है इसमें, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही है, निकोटीन भी जाएगा, आपको बस तरीका मिल गया, आपको लाइटर और सिगरेट रखने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक बटन से प्रेस करेंगे। तो इसमें जो है आपको किसी के पास है ये नहीं है उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये वाली चीजें ज्यादा हानिकारक हैं
1: जब कंपेयर टू,
0: हाँ, क्योंकि इनमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और लोग इसको बहुत शान से,
1: नहीं लगता कि हम ले रहे हैं ऐसा कुछ। आगे बताइए डॉक्टर साहिबा कि पैसिव स्मोकिंग जो है ये, उसका क्या कुछ गंभीर परिणाम जो है भुगतने पड़ते हैं या सामने आ सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए पैसिव स्मोकिंग जो है वो उसे कहते हैं कि सपोज करिए कि इस कमरे के अंदर अगर आप स्मोक कर रहे हैं
1: जी,
0: और मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ, तो जो वो धुआं निकल के मेरे अंदर आ रहा है, मैं सांस के थ्रू उसको अंदर ले रही हूँ, उसे कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। मतलब मैं एक पैसिव स्मोकर या सेकेंड हैंड स्मोकर बन गई, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर इसका प्रभाव बताती हूँ। इसमें एक और थर्ड हैंड स्मोकिंग भी होती है, जिसका मतलब कि मान लीजिए आप यहाँ पे स्मोक करके गए, हम दोनों यहाँ से उठ गए, मैं सेकेंड हैंड स्मोकर भी यहाँ से उठ गई, अब नेक्स्ट लॉट यहाँ पे कोई और आके बैठे, तो आपने जो स्मोक किया था उसके पार्टिकल्स जो यहाँ सब पड़े थे टेबल पे, पर्दे पे, चेयर पे,
1: हवा में,
0: तो जब आप आए, दूसरा इंसान जब यहाँ पे आया, उसने इस टेबल पे हाथ लगाया, कुर्सी पे हाथ लगाया, वो जो है मुंह में छुए अपने हाथ, तो वो हमारी बॉडी में फिर गया। तो ये तीसरा जिसका आपको पता भी नहीं चलता है,
1: मतलब एक चेन है ये, एक से दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा इफेक्ट होता है।
0: तो इसलिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग तो बिल्कुल सामने दिखता है, थर्ड हैंड स्मोकिंग भी एक तरह की स्मोकिंग होती है, जो कि उस जगह पे जो है दोबारा जब कोई इंसान आता है तो वहां से वो निकोटीन के पार्टिकल्स ले जाता है अपने साथ। तो अब बात करते हैं कि ये जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है, आपने अगर हमारा कोटपा का अधिनियम के बारे में सुना हो, जो सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है 2003 का, उसमें उसका सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, निषेध है। आपने बहुत जगह बोर्ड्स भी देखे होंगे इस तरह के, तो उसका कारण यही है कि आप खुद को तो नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप उनको भी इसमें संलिप्त कर रहे हैं। तो इस वजह से सार्वजनिक स्थान पर जो है स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अब इसका प्रभाव जो है उसमें जो निकोटीन वो इंसान ले रहा है पैसिव स्मोकिंग के तर्ज पर, उसमें भी वही तरह के प्रभाव होते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि निकोटीन तो जा ही रहा है, धुएं के माध्यम से वो जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जब निकोटीन जाएगा तो आपको उस तरह के प्रभाव तो देखने को मिलेंगे ही। और इसमें सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात होती है वो ये होती है कि घर के अंदर जब ये चीज की जाती है, कोई कानून घर के अंदर नहीं लागू होता, तो घर के अंदर जब की जाती है तो वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो लोग इन सब चीजों के लिए ज्यादा ससेप्टिबल हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो। तो ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग से एग्जैक्टली जितने मैंने अभी तक आपको बताए कि वो कैसे कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, वो सारे इफेक्ट्स जो हैं इसके अंदर भी होंगे, कम मात्रा में होंगे लेकिन होंगे। तो जो सेकेंड हैंड स्मोकर, अब मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से विश्व में 16 लाख मौतें होती हैं, तो ये WHO के फिगर्स हैं, जो मैं 80 लाख का आंकड़ा आपको टोटल बताया, उसमें सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से 16 लाख लोगों की जान जाती है। उनके हाथ में नहीं है ये, दे डोंट हैव टू क्विट,
1: बिल्कुल
0: है ना, छोड़ना किसी और को है लेकिन वो प्रभावित हो रहे हैं। ये जो है सेकेंड हैंड स्मोकिंग, ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जो कि अपने बस में भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर कितने लोग स्मोकिंग के लिए मना कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बोल पाते हैं। सो इसलिए जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते
1: हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे जो पी रहा है वो तो यूज टू हैबिचुअल उस चीज़ का, लेकिन जो साथ बैठे हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर करता है, तो ये बात सही है?
0: बिल्कुल सही,
1: ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहिबा, जैसे घरों में लोग अक्सर पीते हैं बीड़ी सिगरेट, अपनी फैमिली के साथ बैठ के पी रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के पी रहे हैं, उनके जहन में इतना भर भी मतलब जैसे कहें लेश मात्र भी वो नहीं होता है रिग्रेट कि हम पी रहे हैं तो हमारा परिवार इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप?
0: देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि उनके फैमिली के साथ क्या होगा
1: जी,
0: इसका इफेक्ट जो बच्चों पे क्या होता है, महिलाओं पे क्या होता है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद ये उनको थोड़ा मदद दे। तो अगर मैं सबसे पहले बच्चों की बात करूँ तो जो बच्चे हैं उनके अभी तक लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो रखे हैं, ब्रेन अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर वो धूम्रपान के पैसिव स्मोकर बनते हैं, अगर उनको सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर मिलता है तो उनके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। और अगर लंग्स जो है इमेच्योर रहेंगे तो आप देखिए लंग्स का क्या काम होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं,
1: उसी वजह से हम जीवित हैं।
0: एग्जैक्टली, वो काम करना उनके लिए मुश्किल होगा, उनकी लंग कैपेसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, तो उनको सांस की दिक्कतें आएंगी, एस्थमा होने के चांसेस हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के, जो मैंने आपको बताया सांस जब हम लेते हैं, सिगरेट का धुआं जब लेते हैं, गर्म धुआं जैसे अंदर लगता है, फिर वो सीलिया हमारे जो बालनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, सांस की नली में, तो वो जो है इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ों को दूर रखते हैं, जैसे हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं ना, वैसे वैसे होते हैं, ताकि वो जो बाहर से पदार्थ ऐसा आ रहा
1: है
0: उसको रोक दें। अब ये निकोटीन जब अंदर जा रहा है तो ये सिलिया जो है ये खराब होने लग जाते हैं, तो उनका काम वो नहीं कर पाएंगे, तो इनको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वास नली है जो हमारी उसमें होगा, लंग्स के इन्फेक्शन होंगे, तो एक हम बीमारी बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज,
1: काला दमा भी से कहा जाता है आम भाषा में अगर हम बात करें तो
0: जी, तो वो होने की पॉसिबिलिटी जो है इन बच्चों में बढ़ जाएगी, तो ये इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो गए, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, IQ लो होने के चांसेस है ना, मानसिक रूप से भी जो है इनमें फर्क पड़ेगा इन बच्चों में। और एक बहुत गंभीर बीमारी होती है जो बहुत छोटे बच्चों में होती है, उसको हम कहते हैं SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब कि पता भी नहीं चलता इस बच्चे की मृत्यु क्यों हो गई, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इन घरों में इस तरह की कंडीशन होना, इस तरह की मृत्यु होना बहुत कॉमन हो गया है। सो इन परिवारों से मैं इसीलिए ये सब बता के निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को डोंट सब्जेक्ट देम टू दिस टॉर्चर, है ना, आप खुद अपनी लाइफ के साथ जो कर रहे हैं वो भी नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट वो बच्चा जो चूज नहीं कर सकता कि मुझे तम्बाकू लेना है या नहीं, उसको हम इससे ना एक्सपोज करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम में अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों के लिए रुकने का।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, सुबह के 9:20 होने को है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है, अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनावों के मतों की गणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान जिला परिषद, व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
4: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के चिरुंजा जिला परिषद बाड़ो के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
3: सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला में आज जिला परिषद के 54 और पंचायत समिति के 312 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। विस्तृत जानकारी के साथ सिरमौर जिला संवाददाता।
5: सिरमौर जिला में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। जिला में कुल 365 उम्मीदवार जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनावी मैदान में है, जिनमें से पंचायत समिति के 143 पदों के लिए 312 और जिला परिषद के 17 पदों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतगणना के लिए कुल 12 टेबल जिला मुख्यालय नाहन में लगाए गए हैं, जहां जिला परिषद के 2 वार्डों के अलावा पंचायत समिति के 12 वार्डों की मतगणना की जानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
3: इधर सोलन नगर निगम व जिला परिषद सोलन तथा पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती भी जारी है। मंडी जिले में जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। विस्तृत जानकारी हमारे मंडी जिला संवाददाता।
6: जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। जिला परिषद की 36 सीटों और जिला भर के 240 से अधिक बीडीसी वार्डों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं मंडी नगर निगम के सभी 15 वार्डों में चुनाव लड़ रहे 42 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी आज होना है। मंडी नगर निगम में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कई वार्डों में प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सिमट गया है। नगर निगम मंडी में 15 वार्डों में इस बार कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। विभिन्न वार्डो में आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जिले भर में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शुरुआती रुझानों के साथ ही समर्थकों व प्रत्याशियों की नजरें परिणामों पर टिकी हुई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवा। 3 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाणा, IGMC शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को

0: तंबाकू मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, आघात और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। सचिव ने बताया कि देश भर में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2000 से अधिक तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साचपास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व एक चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साचपास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्यों को संपन्न करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारे किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बारिश के बीच तीसरे चरण में सर्वाधिक 80.81% मतदान। नगर निगमों, जिला परिषद, बीडीसी के नतीजे आज। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अंतिम चरण में रिकॉर्ड 81% मतदान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ऊना में मोबाइल की रोशनी में मतदान, प्रदेश को मिले 1189 और जनप्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक, वर्षा के बीच जमकर बरसे वोट। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, चंबा घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, चालक समेत 8 लापता। दिव्य हिमाचल लिखता है, चुराह के कालाबन में 8 पर्यटकों की मौत की आशंका। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, बारिश से 14 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट। ओलों से ऊपरी शिमला में सेब की 40 डिग्री फसल बर्बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 10:45 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं और अब समय है कार्यक्रम आरोग्यम के शेष भाग का।
3: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
4: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
3: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
4: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
3: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
4: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
3: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
4: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। डॉक्टर साहब आपका भी एक बार फिर स्वागत
6: जी।
5: श्रोताओं कार्यक्रम में आज बात हो रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में और हमारा आज का विषय है सांसों की आजादी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर साहिबा कार्यक्रम में आगे आपसे जानना चाहेंगे कि पुरुषों में तो आमतौर पर ये देखा जाता है, महिलाओं में किस हद तक ये चीज देखने को मिलती है
6: जी। देखिए महिलाओं में मर्दों के औसतन कम इस्तेमाल होता है लेकिन अब जो है महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, खासकर यूथ में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रचलन है। अब देखिए सब कुछ जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाएं सोचती हैं इस फील्ड में भी हम जो है उनकी बराबरी करें, है ना। तो जहाँ पे अच्छाई इन्वॉल्व है वहाँ पे तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी को नुकसान पहुँच रहा है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुँच रहा है, मुझे लगता है उन जगहों पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। महिलाओं पे जो इफ़ेक्ट होता है, जितने तो हमने ब्रेन का बताया, लंग्स का बताया, हार्ट का बताया, ये सारे तो कॉमन हैं जो बीमारियाँ इनमें भी लगती हैं। इसके अलावा जो प्रजनन तंत्र है महिलाओं का वो भी इससे प्रभावित होता है, तो इससे बांझपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो एल्डरली विमेन है, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं या बड़ी महिलाएं हैं, उनमें मीनोपॉज जो होता है, जो महावारी समाप्त होने की उम्र होती है, वो बहुत पहले आ जाती है, काफ़ी पहले आने शुरू हो जाती है। तो ये जो बदलाव हैं, देखिए वो महावारी का जो है वो हमारे एक हार्मोन एस्ट्रोजन से लेना देना होता है,
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: तो वो एस्ट्रोजन का हमारा हमारे शरीर में ज़्यादा वक्त तक रहना अच्छी बात होती है। तो अगर हमारा एस्ट्रोजन हमारे साथ है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से रोकता है वो, लेकिन जब हमारा मीनोपॉज आने वाला होता है तो वो एस्ट्रोजन घटना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम सही वक्त तक रखना चाहते हैं कि 45 to 55 ईयर्स के बीच में अगर ये चीज़ होती है तो दैट इज़ नॉर्मल, उससे पहले होगा तो बहुत सारी बीमारियां और ज़्यादा
5: टाइम लेगा तब भी
6: जी। और साथ में जो है गर्भाशय के मुहाने का कैंसर है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो कि महिलाओं में देखा जाता है, खासकर जो बहुत सारे कारण हैं बट इनमें एक हाँ ये भी है। साथ में जो स्तन कैंसर है उसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस केस में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, बोन्स हमारी जो हड्डियाँ हैं उन पे प्रभाव डालता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस जो हैं इसमें बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीमेल्स को झेलनी पड़ती हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग की जो शिकार होती हैं उनको भी झेलनी पड़ती हैं।
5: अच्छा,
6: जो खुद कर रही हैं वो तो झेलेंगी बट
5: जो साथ में बैठ रहा है वो भी इसका खामियाजा भुगतेगा
6: जी।
5: वही सेम क्वेश्चन है जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें क्या कुछ इफेक्ट रहते हैं?
6: अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में देखिए एक तो हमने कहा कि हमारा जो जो इफेक्ट्स मैंने बताए थे कि लंग्स पे होते हैं
5: जी,
6: उससे हम सांस कम ले पाते हैं
5: जी, जी।
6: है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जब सांस कम आएगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसका इफेक्ट जो गर्भ में बच्चा होता है उसके ऊपर भी होता है। अब क्या है कि जब गर्भ में बच्चा इस चीज से प्रभावित होगा तो या तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं या फिर जो बच्चा पैदा होगा वो लो बर्थ वेट होगा, मतलब उसका वजन जो है सामान्य से काफी कम होगा, या फिर मृत बच्चा पैदा होने के भी चांसेस होते हैं। अगर ये बच्चा पैदा हो भी जाता है तो या तो वजन कम होगा या फिर कोई और तरह के जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जो जन्म से दोष होते हैं बच्चों में, जैसे कि होंठ कटा हुआ, तालू कटा हुआ, दिल में छेद सुना होगा आपने, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस बच्चे का IQ जो है वो सही लेवल तक नहीं आया हो, ये भी हो सकता है।
5: आगे जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि माता पिता बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि स्मोकिंग की आदत पड़ गई है, तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को उठाने चाहिए कि बच्चे इस तरफ बढ़ें आगे?
7: और साथ में ये भी बताएं कि बच्चों का इस तरफ इतना झुकाव क्यों है, खास करके बात करें युवाओं की, तो क्या आकर्षण है जो इनको इस तरफ आकर्षित करता है?
6: जैसे आपने बच्चों की बात की है तो मैं पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चों में आखिर इसका चलन है क्यों ज़्यादा, है ना। सबसे पहला चीज़ है, हम मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है अभी बच्चों का डेवलप हो रहा होता है, तो अगर हम अब देखें तो तंबाकू का जो सेवन है उसकी उम्र बच्चों की घटती जा रही है। हम कहते थे कि 8-9 साल 8-10 साल में जो है वो बच्चे अभी तक नहीं ले रहे होते हैं, 10 के बाद 11-12 में लेना शुरू करते हैं। अब ये उम्र घट के जो है वो 8 साल भी हो गई है
8: जी।
6: तो इतने छोटे बच्चे अगर ले रहे हैं इसको, तो उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है कि जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं उनमें अभी तक ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है। कहने का मतलब है हमारा ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, सामने का हिस्सा, ये हिस्सा जो है वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है। यहाँ पे रैशनल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे कुछ ऑफर किया तो एक चीज होगी कि हाँ ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। एक होगा जो व्यस्क होगा, जो अडल्ट होगा, वो ये सोचेगा कि इसका क्या इफेक्ट हाँ, होगा, मुझे
8: कुछ सवाल खड़े होंगे
6: उनके बारे में सोचेंगे, हाँ ना होगा
8: जी,
6: कुछ थोड़ा सा सोच विचार होगा, उसे कहते हैं हम रैशनल थिंकिंग। तो इन बच्चों में अभी तक वो रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि छोटे बच्चों को इस लत में डालना बहुत आसान होता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा हुआ पीयर प्रेशर, कि कुछ बच्चे जो ऑलरेडी, पीयर का मतलब होता है हम उम्र और प्रेशर होता है दबाव,
8: दबाव हाँ।
6: तो हम उम्र बच्चों का जो दबाव होता है, मान लीजिए हाँ। दोस्त जो हैं वो 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, 3 दोस्त उसमें से स्मोकिंग करते हैं या किसी भी तरह का तंबाकू का पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, बाकी 2 बच्चे जो हैं वो नहीं करते हैं इस्तेमाल। अब उन्हें हमेशा ये खतरा रहता है कि हमारी दोस्ती इनसे टूट जाएगी अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे। वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहते हैं, तो वो होता है पीयर प्रेशर कि वो भी करता है, वो भी करता है, तो मैं क्यों नहीं, तो वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। और साथ में एक इसमें और फैक्टर होता है जो लाइफ स्किल्स की कमी होती है बच्चों में। लाइफ स्किल्स होते हैं कि मतलब कि कोई भी परिस्थिति में कैसे आप रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ना कहने का, जो बच्चों में अभी तक डेवलप नहीं होता है। ना कहना एक बहुत बड़ा हुनर है,
8: हुनर है जी हाँ,
6: है ना, तो
8: जो हर किसी को आता नहीं लेकिन आना चाहिए।
6: यस बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा हुनर है जो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो ना कहने की क्षमता जो है वो वीकनेस नहीं, वो स्ट्रेंथ दिखाती है कि मुझे मालूम है कि मुझे इसकी वजह से क्या होगा, तो मैं ना कहने में सक्षम हूँ। एडिशनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है। ठीक है, पढ़ाई जो है उसमें बच्चे सोचते हैं कि जो स्ट्रेस उनको हो रहा है या जिस तनाव से वो गुजर रहे हैं पढ़ाई की वजह से, ये उम्र अब पूरी किशोरावस्था की बात कर रही हूँ मैं
8: जी,
6: है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है, तो मैं अपना स्टैमिना कैसे बढ़ाऊँ, स्ट्रेस को कैसे कम करूँ, तो कोई दोस्त सजेस्ट कर देते हैं कि इसको सिगरेट को पियो, इससे आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये भ्रामक जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से वो यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत इजीली अवेलेबल है, तंबाकू को हम गेटवे कहते हैं
8: जी।
6: नशे की तरफ जाने के लिए, बड़े बड़े नशे जो हम कहते हैं कि करते हैं लोग, उसके लिए पहला चरण जो है, जो गेटवे है, वो तंबाकू है, क्योंकि आपको थोड़े से अमाउंट में आपकी पॉकेट मनी से ही मिल जाएगा, है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डीलर को आपको वो करने की, है ना, छोटे छोटे खोके हैं उनमें आपको मिल रहा है, सब कुछ आसानी से उपलब्धता है। और एक चीज जो इसमें मायने रखती है वो कि इसको इतना सामान्य कर दिया गया है कई फैमिलीज में, घरों के अंदर, जैसे आपने कहा कि घरों में लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो बच्चों को लगता है इसमें क्या बुरा है फिर
8: जी, हाँ, देखा देखी
6: देखा देखी, जब माँ बाप तो रोल मॉडल्स होते हैं,
8: बिल्कुल,
6: जब माँ बाप को करते हुए वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें तो कोई खराबी
8: नहीं
6: है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि माँ बाप जो है बाहर घूमने गए हुए हैं कहीं हैं, वहाँ पे इस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, चलो घर में नहीं करते हैं पर बच्चों के सामने कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है,
8: कभी कभार किया हाँ।
6: एडिशनली जो है आप ये सोशल मीडिया देख लीजिए, वहाँ पे लोग वो छल्ले बना रहे हैं रंग बिरंगे, तो उन चीज़ों से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो माता पिता को चाहिए, देखिए ये सब चीज़ें कब होती हैं, या तो बच्चे के पास बहुत टाइम है या वो बहुत तनाव में है, है ना, किसी तरह का प्रेशर है जो वो झेल नहीं पा रहा है, तो माँ बाप को एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल जो है घर में देने की ज़रूरत है। आजकल जो ये मोबाइल फोन्स चल पड़े हैं, घर के अंदर ज़रूर बैठे हैं बट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो माता पिता से मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि अपने बच्चे से बात करें वो किस चीज़ से गुजर रहा है उसको जानें और उसको ऑप्शंस दें। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिक्रिएशनल ऑप्शंस हैं, स्पोर्ट्स के हैं, है ना, उनकी तरफ अगर बच्चे को लेके जाएं। घर के अंदर आप देखिए कितने लोग हैं जो आज लूडो और कैरम बोर्ड खेलते हैं, आजकल बंद हो गया। तो बच्चों को और उनकी खूबियाँ पहचानें, जो बच्चों की खूबियाँ हैं उनको अगर हम पहचानते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उस चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उससे तो बच्चे का वैसे ही डोपामिन रिलीज होगा, तो उसको

0: चीजों की
1: जरूरत
0: जरूरत
1: नहीं
0: नहीं
1: पड़ेगी।
0: पड़ेगी।
1: जी मतलब सादे शब्दों में कहें तो बच्चे इस और इसलिए आकर्षित होते हैं कि सोच समझ वाला पहलू उनके भीतर विकसित नहीं हो पाया है,
0: जी
1: और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को ये चीज़ें समझाएं और उनको समय दें।
0: जी
1: जी आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं अब आदत पड़ चुकी है और छोड़ना बड़ा मुश्किल है, अब छूटेगा नहीं, तो कितना सच है इस बात में कि एक बार आदत पड़ जाए फिर नहीं छोड़ सकते क्या उसे?
0: ये बिल्कुल भी सही नहीं है,
1: जी
0: पर ये जो स्टेटमेंट पास होती है
1: जी
0: इसका मैं कारण बता देती हूँ कि लोग ऐसा क्यों
1: क्यों
0: कहते
1: कहते हैं?
0: हैं। देखिए, निकोटीन जो है उसने हमारी ब्रेन की वायरिंग को ऑल्टर कर दिया है,
1: जी
0: उसने चेंज कर
1: जी
0: दिया है
1: जी जी
0: उसको, है ना। तो अब इस वायरिंग को सबको ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त तो
1: वक्त
0: लगेगा,
1: तो लगेगा।
0: और
1: जी
0: जब हम ये कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, अब हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए एक्वाइंट हो चुकी है, एट्यून हो चुकी है
1: जी जी
0: कि अब आदत पड़ गई है हमें रोज जो है तम्बाकू
1: स्मोक
0: लेने
1: करना।
0: की,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बॉडी रिएक्ट करेगी, जिसको
1: बिल्कुल
0: हम मेडिकल भाषा में विथड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं,
1: ओके
0: आम भाषा में हम कहेंगे तोड़ पड़ना। जो
1: जी
0: लेते
1: जी
0: हैं किसी भी पदार्थ का
1: जी जी
0: सेवन
1: जी
0: करते हैं, जब उसे छोड़ते हैं तो उनको तोड़ पड़ती है।
1: ओके
0: तो वो तोड़ जो है किस फॉर्म में होती है तंबाकू की,
1: जी
0: कि जैसे बहुत गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेशन होगी, है ना,
1: ओके
0: चिड़चिड़ापन, घबराहट होगी, है ना, धड़कनें बढ़ रही हैं,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, और उसमें जो है आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ,
1: परेशान हूँ।
0: सिर में दर्द लग रहा
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: बहुत
1: जी
0: बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा
1: बॉडी
0: रिएक्ट
1: सफ़र
0: कर
1: करती है
0: रही है।
1: बहुत।
0: हाँ,
1: जी
0: उससे घबराते हैं लोग,
1: ओके
0: ठीक है,
1: तो उस
0: जब वो
1: कारण
0: नहीं,
1: से।
0: हाँ
1: जी जी जी
0: देखिए, किसी भी चीज़ की पहले जानकारी होना ज़रूरी
1: जी
0: है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: पहले पता होगा अगर कि हाँ ये चीज़ आएगी हमारे सामने,
1: जी
0: ठीक है, उसके बाद ही तो छोड़ने के बारे में सोच
1: जी
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: जब हम बात करते हैं कि छोड़ सकते हैं कि नहीं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है विल पावर। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने नशा छुड़ाना है, अगर वो
1: उसका नशा
0: इंसान तैयार
1: तैयार
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है तो
0: तो
1: नहीं,
0: आप
1: अब
0: उसका
1: कुछ भी
0: नशा
1: करना
0: नहीं
1: है फिर
0: छुड़ा
1: तो।
0: सकते, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: तो विल पावर, विल पावर स्ट्रांग अगर है,
1: है।
0: अब ये विल पावर आती है किसी भी कारण से आ सकती है,
1: जी जी जी
0: बच्चों को सफ़र नहीं कराना है इस वजह
1: जी
0: से,
1: हाँ
0: है ना, मुझे कोई बीमारी जो है वो लग गई है इस वजह से
1: इस
0: हो
1: वजह
0: सकता
1: से।
0: है,
1: जी जी
0: या इस
1: जी
0: पे खर्चा बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: हो
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है,
1: है।
0: इस
1: जी
0: कारण कोई भी हो सकता
1: जी
0: है,
1: जी
0: पर एक कारण अगर चूज़ कर लिया और सोच लिया कि हमने इसको छोड़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उसके लिए एक क्विट डेट, मतलब छोड़ने की एक तारीख
1: तारीख तय करें।
0: निर्धारित करें,
1: जी।
0: ठीक है। उस तारीख का लेना देना किसी बड़े इम्पोर्टेंट दिन से होना चाहिए,
1: ओके
0: जैसे कि आपका बर्थडे हो
1: कोई
0: गया
1: हाँ आपकी
0: या कोई
1: लाइफ का।
0: रिलीजियस
1: जी
0: दिन हो गया
1: जी जी
0: जिसमें कोई पूजा पाठ की जाती है या
1: जी
0: कुछ ऐसा, ऐसा दिन निर्धारित कर लीजिए, और वो होगा कोई मे बी 1 महीना बाद में है या 15 दिन
1: पंद्रह
0: बाद
1: दिन
0: में है वो
1: जी
0: दिन,
1: जी
0: आज आपने सोच लिया,
1: सोच लिया।
0: ठीक है। इसके बाद आपने अपने जो परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ये बात शेयर करनी है ताकि सब आपके साथ हों।
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल
0: आप उसको तोड़ने की भी कोशिश करें तो
1: तो
0: आपको वो
1: आपको
0: मदद मिलेगी
1: मदद
0: अपनी
1: मिलेगी।
0: फैमिली से, एक सपोर्ट
1: जी
0: सिस्टम।
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल
0: विल पावर के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो फैमिली का
1: जी
0: सपोर्ट होता है। तो जो हमारा परिवार और दोस्त हैं
1: जी
0: उनका अगर हमारे पास सपोर्ट होगा तो आप देखिए, जब तोड़ पड़ेगी, जब वो
1: जी
0: गुस्सा करेगा, जब चिड़चिड़ापन आएगा,
1: तलब कह सकते
0: तलब
1: हैं।
0: कहते हैं
1: जी
0: इसे,
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: जी
0: तो जब ये सब होगा तो हमारी फैमिली हमारे पास होगी।
1: जी
0: और इसमें ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं, मतलब
1: कुछ
0: कि
1: चीज़ें आपको
0: हाँ,
1: ट्रिगर
0: मान लीजिए
1: करती हैं।
0: कि हम जो है दो दोस्त हैं, हम जब मिलते हैं तो हम स्मोक करते
1: स्मोक
0: हैं,
1: करते हैं
0: तो
1: जी।
0: जब आप उस दोस्त को देखेंगे तो आपका मन करेगा,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: चाय
1: जी
0: पीने के लिए
1: जी
0: होता
1: जी
0: है अक्सर,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, ऐसा ही होता है कि किसी को लगता है कि मुझे सुबह टॉयलेट जाना है, उससे पहले जो है
1: हाँ
0: मुझे एक सिगरेट पीनी है
1: हाँ
0: या मुझे तंबाकू
1: हाँ
0: लेना
1: जैसे
0: है।
1: लोगों को अक्सर पानी पीने के बाद गर्म पानी पियेंगे फिर टॉयलेट जा सकते हैं,
0: जी
1: वैसा ही कईयों का आदत है कि स्मोक
0: जी
1: करेंगे
0: हाँ,
1: तभी जा
0: कोई
1: पाएंगे
0: खाना खाने के बाद पीते हैं या लेते हैं,
1: जैसे आदत बना ली।
0: हाँ, तो वो ट्रिगर्स होते हैं कि
1: ओके
0: किस चीज़ के वक्त मुझे जो है इसका सेवन करने की सबसे ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: तलब होती
1: ज़रूरत
0: है।
1: होगी। जी
0: तो वो
1: बिल्कुल
0: फैमिली उस बात को समझ सकती
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: दोस्त उस बात को समझ सकते हैं कि जिस वक्त वो ट्रिगर आया उस वक्त उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, बस 5 मिनट के लिए
1: हाँ
0: अगर आपने उसको डिस्ट्रैक्ट कर
1: बिल्कुल
0: दिया
1: हाँ
0: तो ये चीज़ जो है सेटल हो जाएगी।
1: हाँ उसको
0: जो
1: आसानी होगी फिर आगे
0: हाँ,
1: बढ़ने में।
0: जो छोड़ना चाहते हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो तोड़ पड़ती है, विदड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ये तलब जो होती
1: जी जी
0: है,
1: जी
0: ये 3 से 5 दिन तक सबसे ज़्यादा भारी होती है, उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें।
1: ओके यही सवाल है मेरा अगला
0: हाँ
1: कि क्या अगर छोड़ना चाहता है कोई स्मोकर है मान लीजिए वो, तो एकदम से छोड़ देना चाहिए या धीरे धीरे इस चीज़ को कम करें?
0: ये दोनों तरीके जो साइंटिफिकली प्रूवन है,
1: ओके,
0: ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं
1: जी।
0: अब जो मैंने आपको कहा कि डॉक्टर के साथ अगर संपर्क करके हम इस चीज़ को छोड़ें अगर,
1: हाँ जी,
0: तो जो हमारी व्यथा है कि जो विद्रॉल सिम्टम्स आएंगे
1: जी,
0: जो परेशानियां आएंगी उसको कैसे झेलेंगे, तो डॉक्टर उसका समाधान करके देते हैं। उसको हम कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT। उसकी जगह च्युइंगम्स दे देते हैं, पैचेस दे देते हैं, स्प्रेज होते हैं ना, उसके साथ करते हैं। तो जैसे एक एक बार में छोड़ना या धीरे धीरे छोड़ना, इन दोनों पहलुओं पे हम बात कर लेते हैं कि एकदम से छोड़ना जो होता है वो होता है कि जैसे मैंने आज सोचा और आज मैंने छोड़ देना है, या मैंने 15 तारीख सोची थी या 2 तारीख सोची, उस दिन ऑल टुगेदर मैंने सब कुछ बंद कर दिया।
1: ये पॉसिबल है, ये आपने देखा है कि
0: जी जी जी ये होता है,
1: ओके।
0: लेकिन यहाँ पे विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों के मामले में होता है, जब कोई माँ बाप बन जाते हैं
1: जी, जी, जी, जी,
0: ऐसी
1: जी,
0: परिस्थितियों में अक्सर ऐसा देखा
1: जी,
0: जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसमें बहुत बहुत भारी मात्रा में विल पावर चाहिए है, जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत उस इंसान में होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो इमीडिएटली भी छोड़ते हैं। इसमें जो विद्रॉल सिम्टम्स आएंगे उनके बारे में भी उनको पता होना
1: पता
0: चाहिए।
1: हाँ, कि अगर एकदम छोड़ा है तो फिर शरीर पर क्या
0: इसका क्या इफेक्ट होगा,
1: हाँ,
0: और ये इफेक्ट जब होगा तो हमने क्या,
1: क्या
0: करना है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: ये बहुत ही प्रभावी तरीका है।
1: ओके,
0: इसमें जो आप अगर देखेंगे कि जो विद्रॉल के भी सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी आपके सेटल भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है, जो लोग कम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें करना आसान
1: होता है
0: ना।
1: हाँ।
0: अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो
1: जी,
0: वो करना
1: जी,
0: थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें धीरे धीरे करना। और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि इसका रिलैप्स रेट बहुत कम होता है। अगर रिलैप्स मैं आपको समझाऊं कि एक इंसान ने छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा से उसका सेवन करना शुरू कर दिया, इसको रिलैप्स कहते हैं। तो ऑलमोस्ट 75% लोग जो है रिलैप्स हो जाते हैं टोबैको सेसेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे जो सिजेशन जब आपने छोड़ दिया। जो एकदम से वाला मेथड आपने बताया ना, उसमें रिलैप्स रेट बहुत कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: इसमें जो रिलैप्स है वो कम होता है। अगर NRT निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ अगर करते हैं
1: जी,
0: तो आपको जो विद्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो भी बहुत कम आएंगे। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है, लेकिन मुश्किल तरीके के साथ बहुत डर, बहुत वो जुड़ा होता है कि एकदम से छोड़ दूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो धीरे धीरे छोड़ने वाला जो है, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके मामले में ये होता है कि उनको एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है। और एकदम से छोड़ना बड़ा स्कैरी होता है, बहुत डर लगता है लोगों को। तो जिसमें कंज्यूम भी बहुत करता है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कहीं पर भी टूट सकते हैं, उन लोगों के लिए धीरे धीरे करना जो है वो आसान रहता है। तो ये वाला जो मेथड है उसमें विद्रॉल सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आप हर रोज 10 सिगरेट लेते हैं, एक हफ्ता आप 7 सिगरेट्स लेंगे, अगले हफ्ते आप फिर 5 सिगरेट्स लेंगे, ऐसे कम करते करते 0 पे पहुंचना है। और जब आप सिगरेट्स कम कर रहे हैं तो निकोटीन के जो आपको च्युइंगम दिया जा रहा है या पैच दिया जा रहा है वो उसके साथ कपल किया जा रहा है।
1: अच्छा, जो छोड़ दिया उसकी जगह
0: उसकी जगह कुछ और दिया जा रहा है, ठीक है, तो NRT दिया जा रहा है आपको। जब वो दिया जा रहा है तो वो क्या करता है कि आपके जो विद्रॉल सिम्टम्स हैं उनको, क्योंकि उनको वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकोटीन दे रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं दे रहा है, तो आपकी बॉडी उतने ज़्यादा विद्रॉल सिम्टम्स नहीं शो करेगी। और साथ में जब आप डॉक्टर के परामर्श से करते हैं तो वो उसके साथ दवाई भी देते हैं, तो दवाई जो है वो आपको जो डोपामीन का इफेक्ट, मैंने हैप्पी वाला इफेक्ट बताया था कि खुश वाला, वो वाला इफेक्ट उसको देते रहता है, तो पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और वो बहुत आसानी से इसको छोड़ पाते हैं।
1: जी बिल्कुल जी, मतलब आपने ये जो जितनी बात की उसका एक निष्कर्ष हम निकाले तो एकदम से जब हम छोड़ेंगे तो आसान है प्रक्रिया, लेकिन उसके लिए विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और धीरे धीरे हम छोड़ते हैं तो उसके लिए विल पावर जिनकी स्ट्रांग नहीं है उनके साथ ये बात कारगर सिद्ध होती है। लेकिन जो धीरे धीरे छोड़ते हैं वो दोबारा इस चीज़ में आ सकते हैं, और जो एकदम से छोड़ देते हैं उनके चांसेस बहुत कम
0: है
1: दोबारा संलिप्त होने के इस चीज में।
0: जी,
1: आगे डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं कि आजकल मेडिकल थेरेपीज भी हैं इसके लिए, कुछ मेडिकल फील्ड में
0: जो मैं आपको अभी NRT की बात कर रही थी वही है इसकी थेरेपी जो है।
1: तो इसको एक्सप्लेन करें।
0: हाँ, इसमें क्या होता है कि जो

0: हम निकोटीन है वो पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा नहीं जाने दे रहे हैं. जैसे हमने कहा कि आप 10 सिगरेट्स लेते थे, अब आप 7-7 सिगरेट्स ले एक हफ्ते के लिए. तो कुछ कुछ वक्त होंगे जिस वक्त पे उनको जो है तलब उठेगी, लेकिन क्योंकि 7 सिगरेट्स हैं तो कुछ वक्त तो ऐसा निकलेगा जब वो सिगरेट नहीं ले पाएंगे. उस वक्त पे उनको वो थेरेपी च्यूइंग गम होते हैं वो ले लेना है. च्यूइंग गम भी किस तरह का होता है वो कि चबाएंगे आप उसको थोड़ी देर, फिर उसके बाद जैसे उसका रस वगैरह आएगा फिर मुंह में साइड में रखेंगे, फिर जब रस उसका फ्लेवर खत्म हो गया उसके बाद दोबारा से उसको चबाएंगे फिर साइड में,
1: जब चबाएंगे तो रिलीज होगा.
0: हाँ वो रिलीज होगा. तो ये जो है आपको धीरे धीरे और कंट्रोल्ड मात्रा में आपको निकोटीन दे रहा है, लेकिन सिगरेट को इसने रिप्लेस कर दिया. तो इसीलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको. और इसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, दवाई भी दी जाती है. जैसे ब्यूप्रोपियन एक दवाई है जिसको दिया जाता है.
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से ये सब करें, कोई अपने आप ये छोड़ना चाहे तो इस और बढ़ सकते हैं, या डॉक्टर की सलाह उसकी देखरेख में ये कार्य किया जाए?
0: देखिए एडवाइस तो यही रहेगा कि आप अगर सलाह से करें तो आपके लिए भी आसान होगा और दोबारा रिलैप्स होने के चांसेस भी कम होंगे. आप निगरानी में होंगे, आपको बार बार वो फॉलो अप पे बुलाएंगे, पूछेंगे आपसे अब ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं. लेकिन कई लोग ऐसे भी देखे हैं हमने जिन्होंने खुद से छोड़ा और कारगर तरीके से भी छोड़ दिया, लेकिन ये हर किसी के बस में नहीं होता है.
1: हर केस में ये चीज
0: नहीं लागू होती
1: है. बहुत से कानून बने हैं इस चीज को लेकर
0: जी.
1: तो समाज की सोच का बदलना जरूरी है या इन कानूनों का ऐसे कैसे बने रहें ये ज्यादा जरूरी है, सोच में परिवर्तन आए ये ज्यादा जरूरी है, क्या मानती हैं?
0: पहले तो आपने जब कानून का नाम लिया है तो मैं पहले थोड़े से कानून बता दूं आपको कि कौन कौन से हैं.
1: पता हो
0: हाँ जी. तो जैसे मैंने एक कानून का अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोटपा अधिनियम हमारा एक है जो 2003 में आया था, जो कहता है कि तम्बाकू के जो पदार्थ हैं उनका सेवन जो है निषेध है, कहाँ कहाँ पे निषेध है. और जैसे आपने सुना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पे बात की हमने, स्कूल्स जो शिक्षण संस्थान हैं वो ITI भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं, स्कूल्स भी हो सकते हैं, है ना, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, उनके आसपास 100 गज के दायरे में तम्बाकू नहीं बेच सकता है. 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो तम्बाकू ले भी नहीं सकता और बेच भी नहीं सकता. डायरेक्टली जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है तम्बाकू पदार्थों की. तो ये जो है, और जो आपका पैकेट्स आते हैं किसी भी तम्बाकू उत्पाद के उसके ऊपर वार्निंग फोटो बड़े बड़े बने हुए होने चाहिए,
1: छोटा सा कोने में लिखा है, उसे पढ़े ना पढ़े कोई,
0: कोई पढ़े ना पढ़े वो. तो ये सब चीजें, अब ये एक अधिनियम हो गया
1: जी.
0: दूसरा एक हमारा हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिक एक 2016 में एक अधिनियम आया है जो लूज सिगरेट्स होती हैं, लूज सिगरेट्स बेचना जो है वो प्रतिबंधित करता है. और जो भी तम्बाकू पदार्थ जो बेच रहे हैं उनको एक वैलिड लाइसेंस लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है. तो ये जो अधिनियम है ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश टोबैको रेगुलेशन एक्ट. तो ये 2016 में आया. तो ये जो चीज़ें हैं ये बेचनी आइडली तो जो भी वेंडर है उसका एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, है ना. आप देखिए साइकिल पे वो पूरे अपने हाँ, वो लेके चले हुए होते हैं, तो वो एक लाइसेंस कैसे मिल सकता है उनको, वो चाहे स्कूल के पास हो थोड़ी देर में दूर चले जाए, है ना, समझ रहे हैं. तो इसलिए इनका लाइसेंस भी होना बहुत जरूरी है. तो ये अधिनियम जो है ये हमें इसको प्रतिबद्ध करता है कि सबको लेना है. साथ में जो एक हमारा 2019 का पैका करके हमारा एक अधिनियम है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो हैं उनको प्रोहिबिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का पीना प्रतिबंधित करता है. तो ये एक्ट्स हैं. अब इसके साथ अगर आप कहें कि अब देखिए कानून तो बन जाते हैं लेकिन अगर मानसिकता नहीं बदलती है तो फिर हमारे कानून भी कुछ नहीं कर सकते. हर जगह पे आप देखिए पुलिस नहीं हो सकती है, घर के अंदर पुलिस नहीं हो सकती है, हर रेस्टोरेंट में पुलिस नहीं हो सकती है. तो इसलिए हमारा जो ये कानून है, कानून होना उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना एक चीज़ है, उनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अकेले कानून से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि हमारी मानसिकता नहीं बदलती है. और जब तक इंसान ये नहीं समझता है कि इसके दुष्प्रभाव हमें हमारे समाज को सबको झेलने पड़ रहे हैं, तब तक कानून में जो जबरदस्ती वाली बात है ना, कोई कर रहा है आप उसको कानूनन रोक दिया, और एक है उसको खुद से समझ आ गई, वो यहाँ नहीं करेगा तो कहीं और करेगा।
1: डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कॉलेज और स्कूल्स में जागरूकता किस तरह से फैलानी चाहिए इस विषय पर कि बच्चों में बच्चे सचेत हों इस चीज के लिए।
0: स्कूल्स और कॉलेजेस में देखिए जब भी कोई लेक्चर्स होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि वो एक तरफ से बोला जा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, है ना, उसका इतना इफेक्ट नहीं हो पाता है जितना कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीयर्स का इफेक्ट बहुत बच्चों के ऊपर रहता है, तो अगर हम कुछ ऐसे बच्चों को चुने स्कूल में से जिनको हम टोबैको कंट्रोल एम्बेसडर्स बनाएं, है ना, तो उन बच्चों को अगर हम चूज करते हैं और उनको हम प्रशिक्षित करते हैं कि इसका क्या क्या परिणाम होते हैं, और आप सोचिए कि एक स्कूल का हेड बॉय अगर बोल रहा है, स्पोर्ट्स कैप्टन अगर बोल रहा है, तो बच्चों पे उसका इफेक्ट कुछ और तरह का होगा। लेकिन वही हेड बॉय या स्पोर्ट्स कैप्टन अगर जो है अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर क्या होगा,
1: देखा देखी।
0: एक और चीज जो है, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे आजकल जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम बच्चों को जो है ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं। वन टू वन सेशंस टीचर्स जो हैं, देखिए कोई भी बाहर से आएगा वो कभी कभी आके कुछ बताएगा, टीचर्स अगर इस चीज को लें और स्कूल में थोड़ा छोटे छोटे सेशंस करें, बहुत लंबे सेशंस नहीं, छोटे छोटे सेशंस अगर करते हैं तो उसका प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अंत में बस आपसे ये जानना चाहते हैं या आपसे ये कहेंगे कि श्रोताओं के लिए इस दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील आपकी रहेगी?
0: देखिए श्रोताओं से मैं यही अपील करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये समझें कि जो तंबाकू है वो आपके जीवन से, आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपका जो समय है और आपके परिवार को छीन रहा है। ये कोई भी कूल बनने वाली चीज नहीं है, ये आपको जो स्लेवरी में लेके जाती है, मतलब गुलामी की, हाँ ये हमें दास बना रही है, अपना ब्रेन को हमारे हाईजैक कर रहा है, इसीलिए इस चीज से दूर रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर संलिप्त हो चुके हों तो कोई भी उम्र लेट नहीं है, इट इज नेवर टू लेट। आज भी आप अगर डिसाइड करते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे छोड़ना है, तो पूरा समाज आपके साथ है, स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है।
1: जी,
0: तो इस जो दिवस है 31 मई का जो है, यहाँ से शुरुआत हो, पर ये पूरा साल रुके ना, ये अभियान की तरह चले और पूरा साल ये अभियान चलता रहे, जिसके माध्यम से जो है हम तंबाकू को अपने देश से और दुनिया से भी बाहर।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं के साथ साझा की। स्टूडियोज में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और इस इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपने बात की, धन्यवाद।
1: श्रोताओं ये था आज का आरोग्यम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ताल फिल्म से। श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में आपने लव फिल्म का ये गीत सुना। फिल्म संगीत श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिम्मतवार से, आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ों में श्रोताओं, भी आपने बेटा फिल्म का ये गीत सुना। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीत।

0: कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमारे श्रोताओं ने सुनी नरोत्तम व साथियों की आवाज में।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
2: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
2: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं बीना देवी व सखियों की आवाज में ये हिमाचली लोकगीत।

0: खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट रुपीज 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट रुपीज 4.42 लाख ओनली।
3: विथ रुपीज 1,999 डाउन पेमेंट एंड रुपीज 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट रुपीज 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट रुपीज 4.42 लाख ओनली।
3: विथ रुपीज 1,999 डाउन पेमेंट एंड रुपीज 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
5: हिमाचली गीत और लोकगीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दस बजकर 45 मिनट होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जा रही है। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के चिरुंजा जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: इस बीच नगर निगमों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं। धर्मशाला नगर निगम के कुल 17 वार्डों में 11 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 6 सीटें भाजपा तथा 4 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि 1 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा की रेखा देवी ने कांग्रेस की हिमांशी, वार्ड नंबर 2 में भाजपा के शमशेर सिंह ने कांग्रेस के ओंकार चंद को, वार्ड नंबर 3 में भाजपा की आशा देवी ने कांग्रेस की सुदर्शना देवी को पराजित किया। वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस की नीनू शर्मा तथा वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की शैलजा विजयी घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 6 में भाजपा की करिश्मा, वार्ड नंबर 7 में भाजपा की आशु, वार्ड नंबर 8 में भाजपा की प्रेरणा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 9 में आजाद प्रत्याशी, जबकि वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस के प्रत्याशी सुदेश शास्त्री ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग विजयी घोषित किए गए हैं। नगर निगम मंडी के कुल 14 वार्डों में 10 के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 8 में भाजपा तथा 1 वार्ड में कांग्रेस तथा 1 में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
2: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य को संपन्न करवाया जा रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मन की बात रिले किया जाएगा।
1: तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की।
2: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस कार्यक्रम को आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर

0: बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर मुझे तो

0: सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
5: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहमत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः, गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः, सत्श्री अकाल च, अनिमेषगुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन् की बात् इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय, मम नाम अनिमेषकुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहम् ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगतवर्षे अहम् एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहम् एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-century वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड् सङ्क्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव, क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड् सङ्क्रमणकालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री, भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिन्दरवीरः, नमस्ते श्रीमन्। मम नाम गुरिन्दरवीरः। अहं भारतीय नौसेनायां पेटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहं 100 मीटर मितं धावनं 10.09 सेकेण्ड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान्। अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आसन्। आस्ताम् अस्माकं भारतीय संस्कृतिः एषा यदा नाम किमपि पर्व भवति यथा दीपावली नूतन वर्षः वा तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म तदा अहं पृच्छामि स्म एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता एतत् पदकं कुत्र जितम् एतत् चित्रं कदा आकृष्टं तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म सः विज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः अहमेतत् राष्ट्रिय पदकं जितवान् अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान् ततः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुम् इच्छामि सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म अनन्तरं सः मामपि नयति स्म सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत्सर्वं मामपि शिक्षयति स्म ततः मम रुचिवर्धनम् आरब्धम् अहं युसेन् बोल्ट् इत्यस्य ध्वस्तं विश्वकीर्तिमानाङ्कनम् अपि अपश्यम् एतत् सम्बद्धा एका विनोदकथा अस्ति अहं टीवी इति दूरदर्शनं पश्यामि स्म तदा मम माता दूरदर्शनयन्त्रं पिहितवती सा उक्तवती अध्ययनसमयः आसन्नः अधुना भवान् पठतु तदा अहम् उक्तवान् भवतु नाम भवती मह्यं दूरदर्शनं द्रष्टुम् अवसरं न प्रददाति तादृशम् एकं दिनं भविष्यति यदा भवती एव दूरदर्शने माम् अन्वेक्ष्यति यत् पश्यन्तु असौ गुरिन्दरः धावन् अस्ति ममापि महती प्रसन्नता भवति यदा मम माता दूरदर्शने धावन्तं माम् अवलोकयति प्रधानमन्त्री बाढं बाढं बाढं भवतः कथा तु विशिष्टा एव गुरिन्दरवीरः आम् महोदय मध्यमवर्गीयः कुटुम्बः अस्माकं मम पिता अपि वालिबाल् इति क्रीडति स्म गृहसमस्यानां कारणेन सः स्वकीयं क्रीडाक्रमम् अत्यजत् तस्मात् तस्य स्वप्नाः अपूर्णाः एव आसन् ततः स मयि एतान् स्वप्नान् अपश्यत् अथ चिन्तितवान् यत् मम पुत्रः तान् पूरयिष्यति अहमपि एतस्मिन् सन्दर्भे तेन सह संवादं करोमि स्म मिल्खा सिंहः अतिपरिश्रमं करोति स्म इति श्रुत्वा अहं कथयामि स्म अहमपि कस्मिंश्चित् दिने भवतः स्वप्नान् पूरयिष्यामि तदा सः वदति स्म स्वप्नपूर्तिः कथनमात्रेण न भवति तदर्थं महान् श्रमः अपेक्षितः परिश्रमः करणीयः भवति मिल्खा सिंहवर्यः रक्तवमनं करोति स्म आतपे धावति स्म आदिनं प्रशिक्षणं प्राप्नोति स्म एतत् सर्वमपि मां प्रेरयत् पिता मां प्रेरयति स्म यदि अहं धावयेयं तर्हि देशार्थं देशार्थं पदकं मानयेयं जयेयं वा यदा च अहं स्पर्धावर्गे शतमीटर मितं धावनक्रमं चितवान् तदा सर्वे मां तदर्थं निराकुर्वन्ति स्म सर्वे कथयन्ति स्म वत्स शतमिते धावनस्पर्धावर्गे मास्तु शतमितः वर्गः भारतीयेभ्यः नास्ति भारतीयानां वपुः शतमीटर मिते वर्गे सहभागितां कर्तुं नैव निर्मितमस्ति तदा तदा अहं मम पिता च वदावः स्म यत् वत्स गुरिन्दर् आवाम् एतं वर्गं चितवन्तौ अथ एतस्मात् कथमपि पृष्ठतः न भवावः ये खलु कथयन्ति एतौ न कर्तुं शक्नुतः तान् आवां कृत्वा प्रदर्शयेव अथ त्वं तथा करिष्यसि त्वयि मम विश्वासः अस्ति स च विश्वासः यः मम पिता मयि अकरोत् तम् एवम् अहं शक्तिरूपम् अभिज्ञाय अग्रेसरः अभवम् अधुना च प्रत्येकं भारतीयः कथयति मित्र भारतीय धावनक्रमम् आचर प्रधानमन्त्री पश्यताम् भवद्भ्यां विशिष्टं हि कार्याचरणं कृतमस्ति अथ च केवलं दिनद्वये भवद्भ्यां वारत्रयं राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं ध्वस्तं कृतमस्ति शतमीटर मिते धावनक्रमे धावनं यथा गुरिन्दर वीरः अवदत् जनाः कथयन्ति यत् भारतस्य जनानां वपुः तु एतदर्थं न योग्यम् एतावति कठिने सत्यपि भवद्भ्यां कार्यं कृतम् उभाभ्यां श्रोतु कामाः स्युः यत् कीदृशः एषः उत्साहः आसीत् कः हठः आसीत् किं चिन्तितमासीत् अथ कथं कुर्वन्तौ आस्ताम् कियत् कठिनं भवति गुरिन्दरवीरः आम् महोदय अहं गुरिन्दरवीरः आरम्भे अतिसङ्घर्षः आसीत् बहुधा संशयः भवति स्म अपि अहं सम्यक् कुर्वन्नस्मि अपि अहम् सम्यक् चितवान् यतो हि प्रतिवारं कश्चन विजयं न प्राप्नोति कदाचित् भवान् शिक्षणमपि प्राप्नोति यदा अहम् पराजितः भवामि स्म यदा मम प्रदर्शनं सम्यक् न भवति स्म काचित् क्षतिः भवति स्म तदा मम कुटुम्बिनः मम सहयोगं कुर्वन्ति स्म ते कथयन्ति स्म भवतु नाम एकं दिनम् एव अनुत्तमं गतम् एकं वर्षम् असमीचीनं गतम् परमनेन जीवनं तु नष्टं न भवति स्वप्नदर्शनं न बाधितं भवेत् मम प्रशिक्षकः अपि बोधयति स्म यदि त्वं न करिष्यसि तर्हि कोऽपि न कर्तुं पारयिष्यति इत्थं यदा आस्माकीनः समाजः प्रतिवेशिनश्च अस्मान् उत्साहयुतान् कुर्वन्ति तदा अस्माकम् उत्साहः नष्टः न भवति प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य अनिमेषः महोदय मां तु सर्वे वदन्ति स्म यदा 21,000 वर्षे अहं क्रीडनम् आरब्धान् आसम् तदा जनां कथयन्ति स्म पश्य एतत् नूतनं क्षेत्रमस्ति त्वं कर्तुं न शक्ष्यसि तदा अहं कथितवान् अधुना यदा अहम् एतत् क्षेत्रं प्रविष्टवान् तदा अहम् एतत् निश्चयेन साधयामि मम पिता अपि सर्वदा विज्ञापयति स्म त्वं यदि एतस्मिन् क्षेत्रे आगतः तर्हि कदापि पृष्ठतः मा पश्य यतोहि एतत् साधयितुं चिन्तनं तु बहवः कुर्वन्ति परं सफलाः केचनेव भवन्ति त्वम् एतत् क्षेत्रं प्रविष्टः अतः अत्र अवधानं कुरु एतस्मिन् पथे एव अग्रेसरः भव तुभ्यं सर्वाः सुविधाः सर्वविधाः सहायताः वयं दद्मः गृहपक्षतः समर्थनम् आर्थिक समर्थनं सर्वमपि वयं साधयामः त्वं केवलं परिश्रमं कुरु अथ भारतं दर्शय यत् भारतीयाः अपि धावितुं शक्नुवन्ति यतोहि एते मां कथयन्ति स्म यत् भारतीयानां जीन्स इति वंशानुक्रमः तथा भूतः नास्ति येन ते सब 10 उत सब 10.1 इत्येतस्मिन् वर्गे धावितुं प्रभवेयुः अथवा कोऽपि स्प्रिंट इति कर्तुं प्रभवेत् परन्तु अधुना आवां द्वावपि एतत् प्रमाणीकृतवन्तौ यत् भारतीयाः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति न तावत् कठिनम् अस्माकं कृते वयमपि सर्वं कर्तुं शक्नुमः एतत् सर्वमपि माम् अत्यन्तं प्रेरयति अथ यथा क्रमम् आवां प्रशिक्षणं कुर्वन्तौ स्तः क्रमशः कालबन्धं प्रतिवारं ध्वस्तं कुर्वः अन्ये भारतीयाः अपि एतत् पश्यन्तः सन्ति यत् भारतीयाः अपि कर्तुं प्रभवन्ति अथ आवाम् इतोऽपि करिष्यावः श्रीमन् सम्प्रति आवयोः चयनं राष्ट्रमण्डल क्रीडाभ्यः अपि जातम् तत्र आगम्यमानासु स्पर्धासु आवाम् इतोऽपि भद्रतरं प्रदर्शनं करिष्यावः प्रधानमन्त्री अस्तु पश्यन्तु मम मनसि अपि एकं कुतूहलमस्ति अन्येषामपि भवेत् मया श्रुतं यत् युवामुभौ उत्तमे मित्रे स्तः किं युवाभ्यां किमपि पूर्वमेव निश्चितमासीत् यत् यदि त्वं मम कीर्तिमानं भङ्क्ष्यसि तर्हि अहमपि तव कीर्तिमानं भङ्क्ष्यामि इति आदौ अनिमेषः वदतु अनिमेषः श्रीमन् पूर्वं कीर्तिमानं 10.18 यन्ममैव आसीत् ततः गुरिन्दरवीरभ्रात्रा उपान्त्यचक्रे 10.17 प्राप्य तत् भग्नम् ततश्च मया पुनः द्वितीयोपान्त्यचक्रे 10.15 कृत्वा भङ्गम् कृतम् ततः यदा मम उपान्त्यचक्रम् समाप्तम् तदा आवामुभौ प्रसन्नौ आस्व यत् आम् अद्य कीर्तिमानं भङ्गं जातं तथा च आवाभ्याम् उभाभ्यामेव तत् भग्नम् यतोहि तस्मिन् समये स्पर्धायां प्रतिद्वन्द्विता भवति एव परन्तु आवाभ्यां पूर्वमेव निश्चितमासीत् ततः पूर्वं यदा आवां सौदी अरेबिया देशं गतवन्तौ स्पर्धां कर्तुं तदा तत्रापि आवां सहवासिनौ आस्व तत्रापि आवां चर्चां कुर्वः यत् भारतस्य धावनक्रीडा अग्रे नेतव्यास्ति सा च आवयोः एव हस्ते अस्ति आवां यत् करिष्यावः तदेव अन्यान् प्रेरयिष्यति प्रधानमन्त्री गुरिन्दरवीरः किं वक्तुमिच्छति गुरिन्दरवीरः आवाभ्यां निश्चितमासीत् यत् आवाम् उत्तमं धाविष्यावः यदा कदापि श्रीमन् एकस्य आवश्यकता भवति तदा अन्यः साहाय्यार्थं तिष्ठति यदा कीर्तिमानात् पूर्वं यदा मया कीर्तिमानं कृतं ततः अनिमेषेण कृतं यदा आवां प्रागभ्यासं कुर्वन्तौ आस्व तदा अहम् अनिमेषाय अवदं यत् इदानीम् अनिमेष सः खण्डः समीचीनः अस्ति तत्र गत्वा उपविश तत्र पदक्षेपं कुरु वयमत्र प्रागभ्यासं करिष्यामः करिष्यामः। अत्र प्रागभ्यासः समीचीनः भविष्यति। अतः परस्पर साहाय्यं कुर्वः। परस्पर साहाय्येन अन्यः अपि प्रगतिं करोति, वयमपि प्रगतिं कुर्मः। मैत्री अपि आवश्यकी। परन्तु श्रीमन्, यदा वयं क्रीडाङ्गणात् बहिः स्म, परधायाः बहिः स्मः, तदा मित्राणि स्मः। यदा क्रीडाङ्गणे प्रविशामः तदा परस्परं प्रतिस्पर्धिनः भवामः। तत्र तु अहम् अस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि, अहमस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि इत्येव विचारो भवति। प्रधानमन्त्री, पश्यन्तु, युवाभ्यां या स्पर्धा कृता सा देशस्य गौरवं वर्धयितुं, देशं भविष्ये अत्र स्थाने प्रापयितुं एकया सकारात्मक भावनया च कृतास्ति। अहं मन्ये यत् युष्माकम् एषा क्रीडा भावना यत् क्रीडितव्यमपि, परस्परम् आह्वानमपि दातव्यं, ततः अग्रे गन्तुं प्रयासः अपि करणीयः, तथा च अग्रे गन्तुं परस्परं साहाय्यमपि कर्तव्यम्। एतत् अद्भुतं कार्यं कृतं युवाभ्यां। मम पक्षतः भवद्भ्यां भूरिशः वर्धापनानि, मम भूरिशः शुभकामनाश्च युवां देशस्य नाम अपि उज्ज्वलं करिष्यतः इति मम पूर्णः विश्वासः अस्ति। एवमेव परिश्रमं कुर्वन्तु, महती प्रगतिः भविष्यति। भूरिशः शुभकामनाः मम। गुरिन्दरवीरः अनिमेषः। धन्यवादः श्रीमन्, भवते धन्यवादः। प्रधानमन्त्री, भूरिशः धन्यवादः। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीं देशस्य अधिकांशभागेषु महती उष्णता अस्ति। तीव्रः आतपः, उष्णाः वाताः एतादृशे ऋतौ स्वस्य ध्यानं रक्षणमतीव आवश्यकम्। जलं पिबन्तु। यदि आतपे गमनम् अनिवार्यं तर्हि सावधानेन गच्छन्तु। अस्याम देशे सर्वकारस्य विविधैः विभागैः प्रसारिताः सूचनाः अपि मा विस्मरन्तु। सखायः, अस्माकं गृहेषु आतपेन सह योद्धुम् उपायाः बहुधा पाकशालायामेव प्राप्यन्ते। भवद्भिः अपि दृष्टं स्यात्, यथा यथा उष्णता वर्धते तथा तथा पाकशालायाः स्वादः परिवर्तते, पाकशालायाः प्रकारः परिवर्तते। कुत्रचित् मृत्तिकाघटस्य जलं निष्कास्यते, कुत्रचित् दधि निर्मितं भवति, कुत्रचिच्च अपक्वाम्राणि पच्यन्ते। ततः आरभ्यते देशीयपेयानां कालः। देशीयपेयैः भवन्तः अपि परिचिताः सन्ति। यदि भवन्तः उत्तरभारतं गमिष्यन्ति तर्हि अनेकस्थानेषु लप्स्यते आमपन्ना इति अपक्वाम्रस्य स्वादः, उष्णतायाः शान्तिश्च। पंजाब हरियाणा राज्यं गच्छन्तु तर्हि लस्सीति प्राप्यते, विशालचषकेन युक्ता लस्सी इति। राजस्थान गुजरात राज्ये छाछ इति तक्रम्, मन्ये सर्वस्य भोजनस्य सह चरः भवति। तथा बिहार झारखण्ड पूर्वीयोत्तर प्रदेशेषु सत्तू इत्यस्य पेयम्, तस्य तु का कथा, जठरमपि पूरयति, बलं च ददाति। कोंकण गोवा प्रदेशयोः कोकम शरबत इति, सोल कढ़ी। दक्षिण भारते पानकम्, नीरमोर, संबारम तथा ओडिशा राज्ये बेलपना, एतानि केवलं पेयानि न सन्ति, भारतस्य विविध क्षेत्राणां परम्परायाः अङ्गानि सन्ति। एतेषु एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्य भावनायाः दर्शनमपि भवति। एका कथा अवश्यं ध्यातव्या, एतेषु अधिकांशाः पदार्थाः अस्माकं पाकशालातः उत्पन्नाः, अस्माकं क्षेत्रेभ्यः उत्पन्नाः सन्ति। कापि महती ब्रैंडिंग नास्ति, परन्तु वंशानुगतः अनुभवः तेषु समाहितः अस्ति। भवन्तः अपि ग्रीष्मकाले एतेषां देशी पेयानाम् अत्यधिकम् आनन्दं स्वीकुर्वन्तु। सखायः, ग्रीष्मकालस्य आगमनेन सह प्रतिगृहमेका अन्या चर्चा आरभ्यते, सा अस्ति आम्रफलस्य। आम्रं सामान्य चर्चायाः विषयो भवति। भारते विरलमेव तादृशं गृहं भवेत् यत्र ग्रीष्मे आम्रचर्चा न स्यात्। प्रत्येकं क्षेत्रस्य स्वकीयम् आम्रं स्वस्वादः स्वसुगन्धश्च भवति। महाराष्ट्रस्य कोंकणस्य च हापुस, अल्फांसो, गुजरातस्य केसर, एते तु आम्ररसस्य प्राणाः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य दशहरी तथा मम काश्याः लंगडा। अस्तु, लंगडा आम्रस्य एका विशेषता अस्ति, पक्वतानन्तरमपि तस्य वर्णः बहुधा हरितः एव तिष्ठति। बिहारस्य जर्दालु, यस्य सुगन्धः दूरादेव ज्ञायते। चौसा, मालदा, प्रत्येकं नाम्ना सह जनानां स्मृतयः जुष्टाः सन्ति। दक्षिणभारतं गच्छन्तु तर्हि बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम मलगोवा बंगदेशस्य हिमसागरः ओडिशा आंध्रप्रदेशयोः सुवर्णरेखा च अर्थात् स्थानं परिवर्तते आम्रस्य रूपरंगः स्वादश्चापि परिवर्तते सखायः आम्रस्य एषा यात्रा इदानीं ग्रामात् विश्वविपणिं यावत् अपि प्राप्नोति अद्य मन की बात इत्यस्य माध्यमेन अहम् आम्रस्य उत्पादनेन सम्बद्धानां मम कृषक भ्रातृ भगिनीनां प्रशंसां करिष्यामि भवन्तः देशस्य कृषि अर्थव्यवस्थायाः कृते सामान्याः कृषकाः न अपितु अतीव विशेषाः सन्ति एकमेव प्रसिद्धाः भवेयुः सखायः ग्रीष्मकालस्य एतेषु दिनेषु यद्यपि विद्यालयानां ग्रीष्मावकाशाः भवन्ति परन्तु अहम् एकस्याः तादृश्याः कक्षायाः चर्चां करिष्यामि यत्र भवन्तः अपि प्रवेशं प्राप्तुम् इच्छेयुः सखायः एकां स्थितिं कल्पयन्तु तादृशः विद्यालयः यत्र बालकाः अपि आगच्छन्ति युवानः अपि वृद्धाश्च यत्र शुल्कं नास्ति विशालं भवनं नास्ति कापि कक्षा नास्ति तथा च अतीव रोचका वार्ता तत्र कक्षा नद्यां भवति सखायः एषा काचित् कथा नास्ति एषा एकः सत्यः प्रयासः अस्ति केरलस्य आलुवा नगरे साजी वला शेरिल महोदयः एतादृशमेव तरणसङ्घं चालयति अद्यावधि 15,000+ जनाः अत्र तरणं शिक्षितवन्तः साजी महोदयेन दिव्याङ्ग बालकेभ्यः अपि तरणं शिक्षितम् अस्य प्रयासस्य पृष्ठे एका वेदनापि निगूढास्ति कानिचन वर्षाणि पूर्वम् एकायां नौका दुर्घटनायां बहवः छात्राः मृताः तया घटनया साजी महोदयस्य मनसि आघातः जातः तेन चिन्तितं यदि बालकाः तरणं जानीयुः तर्हि प्रायः अनेकेषां प्राणाः रक्षितुं शक्यन्ते स्म अत्रैव आरब्धम् अस्य अभियानम् सखायः साजी वला शेरिल महोदयस्य जीवनम् अस्मान् एकां महतीं शिक्षां ददाति सेवां कर्तुं विपुलानां साधनानाम् आवश्यकता नास्ति आवश्यकता भवति एकस्य उत्तम संकल्पस्य निरन्तर प्रयासस्य च एतेषामेव बलेन सहस्रशः जनानां जीवने परिवर्तनमानेतुं शक्यते मम प्रियाः देशवासिनः गतदिनेषु अहं यूरोप इत्यस्य नेदरलैंड्स देशं गन्तुम् अवसरं प्राप्तवान् तत्र अहम् अनेकासु गोष्ठीषु सम्मिलितः अभवम् तदैव एकः तादृशः क्षणः आगतः येन प्रत्येकं भारतीयः गर्वेण पूर्णः जातः नेदरलैंड्स देशे आयोजिते एकस्मिन् विशेष समारोहे चोलकालस्य प्राचीन ताम्रपट्टिकाः भारताय प्रत्यर्पिताः तस्मिन् कार्यक्रमे नेदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्री अपि उपस्थितः आसीत् एताः ताम्रपट्टिकाः उद्दिश्य मया देश विदेशेभ्यः निरन्तरं सन्देशाः प्राप्यन्ते जनाः प्रसन्नतां प्रकटयन्ति गर्वं च अनुभवन्ति विश्वस्य तमिल समुदायेपि एतद् विषये विशेषः उत्साहः अस्ति सखायः अस्मिन् ताम्रपट्टिका विषये जनेषु महती जिज्ञासा अपि अस्ति अतः अद्याहमेतत् सम्बद्धाः काश्चन वार्ताः भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि एतासु एकविंशतिः बृहत्यः तिस्रः लघ्व्यश्च ताम्रपट्टिकाः सन्ति एताः मुख्यतया राज्ञा राजेन्द्रचोलप्रथमेन स्वपितुः राज्ञः राजराजचोलस्य एकं वचनं पूरयितुं सम्बद्धाः सन्ति एतासु आनय मंगलम ग्रामम एकस्मै बौद्ध विहाराय दानस्य उल्लेखः अस्ति एतासु ताम्रपट्टिकासु चोलवंशस्य उपलब्धयः अपि वर्णिताः सन्ति एताभ्यः ज्ञायते यत् चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिः कियती दृढा आसीत् दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धानामपि विषये एतासु सूचनाः लभ्यन्ते चोल साम्राज्यस्य समृद्धेतिहासे संस्कृतौ च वयं सर्वे महान्तं गर्वमनुभवामः सखायः अस्माकं सर्वकारः भारतस्य एतादृशीनाम् अमूल्य न्यासानां संरक्षणाय निरन्तरं प्रयासं करोति अस्याम श्रृंखलायां ज्ञानभारतम् अभियानस्य अन्तर्गतं छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार नगरेपि एकं महत्वपूर्णं अन्वेषणं जातम् अत्र तिस्रः दुर्लभाः ताम्रपट्टिकाः प्राप्ताः सन्ति। एताः पाण्डुवंशी राजवंशस्य महर्षि बालार्जुनस्य शासनकालेन सम्बद्धाः इति मन्यन्ते। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् एताः पट्टिकाः षष्ठी सप्तमी शताब्द्याः सन्ति, अर्थात् चतुर्दशशतं पञ्चदशशतं वर्षाणि प्राचीनाः एताः ताम्रपट्टिकाः प्राचीनायां ब्राह्मी लिप्यां पालीभाषायां च लिखिताः सन्ति। एताभिः तदानीन्तन शासन व्यवस्थायाः धर्मस्य संस्कृतेश्च विषये महत्वपूर्णाः सूचनाः प्राप्यन्ते। सखायः, भारतीयेषु खगोल विज्ञानं प्रति सर्वदा विशेषमाकर्षणमस्ति। अस्माकं देशे अद्यापि शताब्द प्राचीनाः वेधशालाः सन्ति। अत्र अद्भुत गणितीय आविष्काराः जाताः।

4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:08 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दिल जले से। आवाजें हैं कुमार सानू और आदित्य नारायण की।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मृत्यु दंड फिल्म का गीत सैनिक भाइयों अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साधना सरगम की।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए चुनकर लाए हैं। फिल्म का नाम है बाजीगर, आवाज है पंकज उदास की।

0: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
1: जहां संवरेगा सखियों का आज और कल,
2: जानकारी मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
1: जहां आप नहीं रह पाएंगी हमसे दूर।
0: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
2: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
1: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
2: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
1: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
0: दोपहर 12:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।

एक लड़का एक लड़की सैनिक भाइयों, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी साधना सरगम और कुमार सानू की। और इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से एक प्यारी सी मीठी सी मुलाकात करने के लिए। आप सभी को आपकी अपनी रेडियो दीदी प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और दिल से शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का जो एक बार फिर से हमारे इस हसीन सफर के हम सफर बन गए हैं। मई महीने का ये आखिरी रविवार है। जी हाँ, इंतजार बच्चों को भी रहता है और बहुत सारा इंतजार रहता है आपकी रेडियो दीदी प्रवीण का कि कब हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से एक प्यारी सी मुलाकात करें, उनसे मिलने जाएं, ढेर सारी बातें करें और बातों के साथ साथ हम जानकारियां भी आपसे साझा करें। माना नन्नी दोस्तों कि यह जो इंतजार है बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, लेकिन इंतजार भी इस इंतज़ार में मज़ा भी उतना ही आता है। कहते हैं जितना इंतज़ार बड़ा होता है, लंबा होता है, तो मज़ा भी उतना ही दोगुना हो जाता है। और वो तो आपने सुना ही होगा बच्चों कि जल्दी और आसानी से जो चीज़ मिल जाए उस चीज़ में मज़ा कैसा, उस कामयाबी में मज़ा कैसा। इसलिए तो हम भाई 6 दिनों का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलने आते हैं अपने प्यारे बच्चों से। बच्चों, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता भी उतनी ही अच्छी होगी और मीठी होगी और बड़ी होगी। तो इतना ही हम आपसे कहेंगे कि दिल में उम्मीदों को आपने हमेशा जिंदा रखना है। जी हाँ, कभी कभी होता है ना कि छोटी छोटी सी कोई असफलता जब हमें मिल जाती है तो हम थोड़ा सा सहम जाते हैं, उदास हो जाते हैं या फिर उम्मीद करना छोड़ देते हैं। तो ये जो उम्मीद का एक तारा होता है ना, एक आस होती है, किरण होती है, बस उसी एक आस एक किरण को आपने हमेशा अपने दिल में जगाकर रखना है। तो अब आपकी रेडियो दीदी आपको बता देती है कि कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसके साथ साथ जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे मौसम और बचाव की। और हाँ नन्हे दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट यानी पड़ाव रहेगा बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हम इसे खूबसूरत बनाएंगे। ज्ञान के मोती बिखेर कर आपको भी थोड़ा अजीब लगता होगा ना कि रेडियो दीदी भी कैसी कैसी बातें करती है। अजी, जब तक हम ये जो ज्ञान का बड़ा सा घड़ा भर कर लाते हैं ना, और इस घड़े को जब तक हम इस कार्यक्रम में उड़ेले ना जाने क्यों हमें तसल्ली ही नहीं मिलती है और ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो रेडियो दीदी के पास रह गया है। तो चलिए, अब आपकी रेडियो दीदी अपनी बातों को यहीं पर विराम देती है और आप तक पहुंचा रही है बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। और हाँ, गीत को आपने बहुत ही अच्छे से सुनना है क्योंकि इसके बाद रेडियो दीदी ने पूछने हैं आपसे कुछ सवाल और उन सवालों का आपने करना है इंतजार। और हाँ, उन सवालों के उत्तर भी आपने देने हैं क्योंकि हमने आपसे जोड़े हैं अपने दिल से दिल तक के तार।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में इस समय है बच्चों की वही प्यारी सी भुलक्कड़ सी रेडियो दीदी प्रवीण। जी हाँ, भुलक्कड़ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी ये दीदी भूल जाती है। जब तक दीदी को भी डांट ना पड़े ना, दीदी सुधरने का नाम नहीं लेती है। जी क्या करें। तो नन्हे दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत से पहले हम आपसे ये पूछ रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि इस प्यारे से गीत में आपने क्या सुना। बच्चे बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, है ना। जो चीज़ें हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, वो सारी चीज़ें, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो बच्चों को बड़ों को बहुत लुभाते हैं। मन करता रहता है कि इन सारी चीज़ों को हम खा लें, इन खाद्य पदार्थों को हम खाएं, चाहे फिर वो हमारे शरीर को कितना ही नुकसान क्यों ना करें, पर ये जो जी ललचाता है ना, तब रहा नहीं जाता है। भाई सिकंदर तो वही है जिसने अपने मन पर विजय पा ली। तो हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि सिकंदर बनना है तो मन की बहुत सारी इच्छाओं को आपको मारना भी होगा, और इच्छाएँ आपने वही मारनी है, उन्हीं इच्छाओं को आपने बाहर फेंक निकालना है जो सच में हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी और सही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। बच्चों हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि आम जन को तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान जैसे कि कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके, और इसके साथ साथ हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियों के प्रति आम जन को जागरूक किया जा सके। नन्हे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दिन का उद्देश्य आम जन को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 1987 में तंबाकू महामारी से होने वाली मौतों और बीमारियों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। और हाँ बच्चों, आपको हम ये भी बता देते हैं कि तंबाकू के सेवन से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग अपनी कीमती बहुमूल्य जान, अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। बच्चों तंबाकू सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि यह दूसरे व्यक्तियों को भी हानि पहुंचाता है। बच्चों जो व्यक्ति तंबाकू या धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनमें लगातार खांसी, स्वाद एवं गंध को महसूस करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगती है। नन्ही दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खड़े हैं या घर, कहीं हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, घर में कोई धूम्रपान करता है और हम उसके आसपास बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जो धुआं उस समय निकलता है उससे जो पास बैठे व्यक्ति होते हैं उन्हें भी सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। और सार्वजनिक स्थलों की हम बात करें तो वहाँ पर फैली हुई गंदगी, धूम्रपान, तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं, इधर उधर थूक देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी की समस्या या फिर सांस लेने में कठिनाई जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम तो नन्हे दोस्तों यही कहेंगे कि भाई धूम्रपान करने से बचना है, और साथ ही साथ तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं उनसे भी हमारा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि तंबाकू को ना कहकर अपनी ज़िंदगी को आपने हाँ कहनी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। बच्चों जो उद्योग तंबाकू या फिर अन्य धूम्रपान संबंधित सामग्री को तैयार करते हैं, अक्सर युवाओं को लुभाने के लिए नए नए तरीके भी अपनाते हैं। इस दिन के माध्यम से बच्चों और युवाओं को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से बचाने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। और हाँ नन्हे दोस्तों, अगर आपके घर पर या आसपास कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो आप उन्हें जागरूक कर सकते हैं और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में उन्हें सतर्क कर सकते हैं। कहते हैं बच्चों की जब बड़ों की बातों का असर जहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पर छोटे बच्चों की बात का असर जल्दी शुरू होने लगता है। पता है कैसे? क्योंकि जब बड़े कहते हैं ना तो हमेशा यही रहता है कि अरे इनका काम तो बोल रही है, कौन इनकी बातें सुनता रहे। लेकिन जब यही बात हमारे छोटे बच्चे बहुत ही सतर्कता के साथ, विनम्रता के साथ कहते हैं ना, तो वो चीज़ जल्दी असर शुरू करती है। अच्छा बच्चों, कई बार पता है क्या होता है कि हमारे ही घर के कोई सदस्य कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना, कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो आप उन्हें कभी बीच में रोकना टोकना, है ना, उन्हें कुछ पल के लिए लगेगा कि अरे हम कहाँ पर खड़े हैं, छोटा सा बच्चा हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हम में कोई ना कोई कमी ज़रूर है, जो इतना छोटा सा बच्चा हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है। तो नैनी दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश आपने भी करनी है आज से, अभी से। देखिए जरा इधर उधर, कोई आपके आसपास धूम्रपान तो नहीं कर रहा है, कोई तंबाकू का सेवन तो नहीं कर रहा है, तो उन्हें ज़रूर रोकिए टोकिए। और तंबाकू के सेवन से जो भी हानियां होती हैं, जो भी हमारे शरीर पर जो समस्याएं आती हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, आपने उन्हें ज़रूर बताना है। तो अब हम नन्ही दोस्तों से एक छोटी सी इजाज़त ले रहे हैं कि रेडियो दीदी अपनी बातों को यहाँ पर विराम लगाना चाहती है। तो विराम अगर हम लगा रहे हैं और भेज रहे हैं अपने नन्ही दोस्तों के रेडियो सेट्स पर, बिल्कुल आप ही की तरह प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
1: की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक बार फिर से दीदी के सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम बाल सभा। हमारे बच्चे समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दीदी प्रवीण के साथ। और बच्चों, अब हम आखिरी पड़ाव में हैं और आपको हमने ये कहा था कि हम ज्ञान के मोती यहाँ पर बिखेरेंगे। तो जो जो मोती गिरेंगे, जिस जिस के हाथ में आएंगे, वो मोती आपने जल्दी से इकट्ठे कर लेने हैं और भर देने हैं अपने ज्ञान के थैले में। नन्हे दोस्तों, तितलियां ऐसा जीव है जो अपनी जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद को महसूस करती है। उनके पैरों में मौजूद सेंसर ही बताते हैं कि कौन सा फूल उनका अगला मीठा पकवान होगा, यानी उनकी बैठने की जगह होगी। बच्चों, हमारे सौर मंडल में शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है, क्योंकि यह ज्यादातर गैसों से बना होता है। और हाँ, ध्रुवीय भालू बाहर से सफेद दिखते हैं, लेकिन इनकी त्वचा काले रंग की होती है। और अब चलते चलते एक छोटी सी कविता रेडियो दीदी आप सभी बच्चों को सुना रही है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कवि इतिहास को पलट कर चल। जब तक ना हासिल हो तेरी मंजिल, तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज भी मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो नन्हे दोस्तों, अगर आप भी दुनिया भर की तमाम झमेलों से और मुश्किलों से बचना चाहते हैं, तो अपना निशाना हमेशा साध कर रखना है, यानी अपने लक्ष्य को हमेशा आपने निर्धारित करके रखना है। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ अब आपकी रेडियो दीदी प्रवीण ले रही है आपसे विदा। और जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे अंकित धीमान और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। तो जाने से पहले प्यारा सा मीठा सा वादा हम आपसे चाहते हैं कि हमेशा आपने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपने हंसी से, अपनी खुशी से अपने घर आंगन में ढेर सारी खुशियों को आपने बिखेरते रहना है। और हाँ नन्हे दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात कि दिन जब शुरू होता है ना, तो उसी समय आपने ये ज़रूर सोचना है उठते समय कि आज का ये जो दिन शुरू हुआ है, मैं एक अच्छा काम, एक अच्छी बात ज़रूर सीखूंगा और उस अच्छे काम को, अच्छी बात को अपनी लाइफ में फिट करूंगा, यानी अपने जीवन में ज़रूर उतारूंगा। तो अब दीजिए रेडियो दीदी प्रवीण को अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

अभी हमारी श्रोता सुन रही थी कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में

0: करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking 4 national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. 3 persons lost their lives after a commercial building collapsed near Saket metro station in South Delhi last evening. 5 persons are undergoing treatment at the hospital, while 3 have been discharged after receiving treatment. Meanwhile, Chief Minister of Delhi Rekha Gupta visited the incident site in South Delhi and reviewed the ongoing relief and rescue operations. In a social media post, the CMO informed that rescue teams have been continuously engaged in operations since last night. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General N.S. Rajasubramani has said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS,

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूँ चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की ज़िंदगी से यूँ चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज़ में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसक, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुँचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई ज़िंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज़ उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज़्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहाँ हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए, लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की ज़िंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं, बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ, लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जा।
1: जाता है

ग्यावासी लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई। तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूँ ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहाँ दूरियाँ ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गाँव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें ज़रा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियाँ साथ नहीं देती और आँखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफ़र से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाज़त। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सो

0: कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी, गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल बिस्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। आज हुई मतगणना के मुताबिक धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा को 12, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को भी 1 वार्ड में जीत मिली है। पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने स्थानीय नगर निगम पर भाजपा को मिली जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है।
2: 17 में से 11 वार्ड में पार्टी जो है वो विजय होकर आई है। बहुत बड़ा ये मैंडेट है पार्टी के लिए। हमारी तो अपेक्षा थी कि इससे ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन कुछ जगह पर कुछ अंतर से जो है वो पार्टी हारी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बना है। पूरे नगर निगम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और नगर निगम में कार्य हो, धर्मशाला जो है वो तेजी से विकास की गति पकड़े और आने वाला समय अच्छा हो धर्मशाला के लिए, इस भावना से हम लोग सब काम करेंगे।
0: इस बीच प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज हो रही है। राज्य के 51 विकास खंडों में सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई और अनेक सदस्यों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार आज शाम तक

0: और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में दूसरे चरण में 11 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है पीएम स्वनिधि गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर। वाचक स्वर है पूनम शर्मा।
0: पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है जो अपनी आजीविका को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में सब्जी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाला, ये भारतीय शहरों में आम नजारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाला और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाला भी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी के लिए उतने ही जरूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों और आस पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफायती सामान और जरूरी सेवाएं देते हैं। हालांकि औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई। ये अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्तीय पहल थी जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान देना था। आज पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में जबरदस्त तरक्की की है। इस योजना के तहत 55,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8,96,000 करोड़ रुपए के 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इन मजबूत उपलब्धियों और महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना ने देशभर के विक्रेताओं के लिए व्यापार की स्थिरता को मजबूत किया है और उनकी आमदनी में सुधार किया है। लगभग 95% लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया। लगभग 30% लोगों ने बाद में स्वनिधि ऋणों के अलावा अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया जो उनकी बेहतर ऋण पात्रता और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। लाभार्थियों की आय में भी औसतन लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पीएम स्वनिधि के तहत हुए आर्थिक लाभों ने लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना ने आवास की अधिक स्थिरता और पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच में सहायता प्रदान की। पीएम स्वनिधि ने शहरी क्षेत्रों के कमजोर समुदायों के बीच सामाजिक समावेशन को भी मजबूत किया है। इस योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं जो इसमें मजबूत लैंगिक समावेश को दर्शा

आती हैं। लगभग 70% लाभार्थी हाशिए पर रह रहे समुदायों से हैं, जो इस योजना की समावेशी पहुंच को उजागर करता है। आंकड़ों और ऋण वितरण के पीछे दृढ़ता, साहस और नई उम्मीदों की कहानियां हैं। कई विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि ने स्थिरता, विकास और उन अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें कभी उनकी पहुंच से बाहर माना जाता था।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे।

0: लेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवानियों अपनी थी, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
1: याद। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें, ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा ज़रूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहाँ पहुँचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हाँ
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
3: देसी
2: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव।
1: डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चलें।
1: नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई साड़ी।
0: ओह डेजी।

0: उस दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। 2 दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में है, कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: अब छोड़ो, अब डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी हाँ
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया आप। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
0: वो तो बहुत बीमार है। 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
2: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके,
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
2: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन नूनो ने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
2: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
2: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
2: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
2: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
2: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो। लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
3: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
3: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
3: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
3: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
3: लॉरेंस को? नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
3: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
3: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
3: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
3: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
3: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
3: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, उसे देख लीजिए डॉक्टर।
3: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज।
3: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
3: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
3: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ, डॉक्टर रामदास।
3: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
3: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
3: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
3: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं?
3: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
3: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
3: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
3: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
3: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
3: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, that was a mere death. एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
3: No, it was not a mere death. It was a clear murder.
2: No, doctor.
3: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: No. क्यों डॉक्टर,
3: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों, बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर
3: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
3: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
3: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
3: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर।
3: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूँ।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
0: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
2: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
2: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
0: लॉरेंस, तुम अचानक,
2: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
0: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
2: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
0: मैं भी तुम्हें,
2: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
0: भुला दूंगी।
2: हाँ,
0: हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
2: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
0: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
2: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
0: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। हाँ। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
2: डेजी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
2: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
2: नहीं, नहीं, नहीं, डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ले।
2: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
2: सकेंगे। डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
2: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
2: ओह नो,
0: खैर, मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
2: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
2: नहीं नहीं, डेजी, डेजी,
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
2: अरे,
0: अरे, ये आपको क्या रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेसी, ये मेरी नसें टूट रही हैं डेसी। डेसी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है डेसी।
0: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो बेटा, करो बेटा, मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: सोचने लगे।
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने को हैं। कुछ इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप,

0: लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: रखते ही
0: हैं।
1: हैं।
0: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी।
1: जी बिल्कुल।
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी।
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूँगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहाँ पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा।
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया
0: जो
1: गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप।
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर।
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज़ नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज़ में ले जाते थे।
0: जी
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम। हाँ,
0: जी
1: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफ़ी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा
0: नहीं
1: नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: जी, वो गर्म है।
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ, और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा।
0: अच्छा
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
0: अच्छा
1: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
0: जी
1: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो
0: हाँ
1: दी होगी,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
0: पिता जी
1: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब
0: अच्छा
1: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहाँ से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
0: अरे हाँ
1: तो उन्होंने बोल दिया वहाँ पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
0: जी
1: लेके।
0: जी
1: तो वहाँ से कोई नहीं आया। वहाँ मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
0: जी
1: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ़ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
0: जी जी
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
0: जी
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
0: विवाह
1: यूनियन था
0: हाँ वो संपन्न हुआ
1: विवाह का, तो वो खुशी
0: जी
1: खुशी उसकी समापन हुआ,
0: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
1: एक
0: उस
1: पानी बन के
0: दाम्पत्य
1: रही।
0: जीवन में।
1: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी ये सबसे बड़ी बात है जी
1: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
0: वाह
1: मतलब
0: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
1: ऐसी
0: में की
1: थी।
0: गई
1: हाँ
0: नाना नानी के द्वारा।
1: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी
2: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था या उनकी क्या हाइट थी और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये
0: मतलब
1: कोई जानबूझ के
0: नहीं हुआ। हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था, तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया। और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई।
0: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी,
1: थी,
0: जी
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत खूब।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त लिखी,
0: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी, तो मितुल जी आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज़ हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
1: सही बात
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, अब जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के सिवाय वो पूरी नहीं होती।
0: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज़्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुँचना संभव हुआ।
1: जी,
0: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही गीत
0: साबरमती के संत।
1: साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूँ डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहाँ पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहाँ जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल। वो दर्शन
1: एक
0: जो
1: छोटे
0: उन्होंने
1: पिंजरे
0: दिया।
1: में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत
0: हाँ,
1: क्या हो गई भगवान,
0: हाँ,
1: कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी,
0: देखी।
1: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
0: मुखड़ा
1: क्या
0: देख ले
1: बताऊं,
0: दर्पण में।
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हरेक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास,
1: हाँ,
0: और आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
1: सुनते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्वा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो

0: माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई,
1: चतुराई
0: कर्म का लेख मिटे
1: मिटे
0: ना
1: ना
0: रे
1: रे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई रे। गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और अपने
0: दर्शन
1: मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे ना रे भाई, तो
0: हाँ,
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: गलत।
1: है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: वाले
0: तेरे दुख दूर करेंगे राम,
1: राम
0: तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की भक्ति रचना भी आपने सुनी। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्मों से भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

कवि प्रदीप की रचना, कवि प्रदीप की ही आवाज में अभी आपने सुनी। चंडी पूजा फिल्म की रचना थी, संगीत अजीत मर्चेंट का था। फिल्मों से बचन आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लीजिए सुनिए शागिर्द फिल्म की रचना। रचनाकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज लता मंगेशकर की है।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। लीजिए सुनिए इस फिल्म की ये भक्ति रचना। संगीत रविंद्र जैन का है, आवाज है हिमलता और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों जय हिंद। आज के कार्यक्रम में वीकली पल्स, जी हाँ दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारे आसपास या दूर दराज के क्षेत्रों में देश विदेश में क्या घटित हो रहा है, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो शायद ज्ञान विज्ञान की दौड़ में हम कहीं पीछे रह जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी सामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही आपको देंगे कुछ रोचक जानकारियां और करेंगे आपका मनोरंजन फिल्म संगीत के साथ। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के सुहाने सफर पर।

युवा साथियों, क्या आप जानते हैं रेणुका वन्य जीव विहार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित है। इसे वर्ष 1984 में अधिसूचित किया गया था और ये क्षेत्र रेणुका झील के आसपास फैला है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय वन्य जीवों का संरक्षण करना है। दोस्तों, हमारे जीवन में वनों का बहुत महत्व है। वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे, वन सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा और हम एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना भी तभी कर सकते हैं।

युवा साथी आपको बताते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। जी हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो लगभग 87 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ आपको रंग बिरंगे फूलों की घाटी देखने को मिलती है। साथ ही ये स्थान हिमालयी दृश्यों और जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है।

0: जी वह साथियों, साथी बात करते हैं पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य की। ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में स्थित है और हाल ही में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये अभयारण्य 1084 हेक्टेयर में फैला है। इस अभयारण्य में पार्वती और अर्का नामक दो झीलें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
3: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
4: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
3: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
4: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
4: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत से पौधे, जड़ी बूटियां औषधीय गुण रखते हैं। आर्टेमिसिनिन एक मलेरिया रोधी दवा है जो आर्टेमिसिया एनुआ नामक पौधे से प्राप्त होती है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार इसके अधिक प्रयोग से दवा प्रतिरोध बढ़ जाता है।

ये साथियों, भारत ने दिल्ली में स्थित CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में विश्व की दूसरी NESL और सौर सेल अंशांकन के लिए 5वीं राष्ट्रीय प्राथमिक मानव सुविधा आरंभ की है। NESL भारत के लिए विशेष वायु प्रदूषण निगरानी प्रणालियों की जांच और प्रमाणन करेगी, जिससे नीति क्रियान्वयन और उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

0: अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी दोस्तों, सुनिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर की सहायता से मपेम्बा प्रभाव का पहला सिमुलेशन किया। आपको बता दें कि मपेम्बा प्रभाव वह स्थिति है जिसमें गर्म पानी कुछ परिस्थितियों में ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जम जाता है। इसे सबसे पहले अरस्तु ने वर्णित किया और 1969 में तंजानिया के छात्र इरास्टो मपेम्बा के नाम पर इसका नाम मपेम्बा प्रभाव रखा गया।

युवा साथियों, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने दो निजी कंपनीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 28 और 29 मई 2026 को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत उन्नत ग्लास सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाया जाएगा। ये परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली जो कि भुवनेश्वर में है, उस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि ये परियोजना देश के सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और युवा साथियों, चलते चलते कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

युवा साथी उसी गीत के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। युवा साथियों जय हिंद। युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। छह बजकर छह मिनट पर सुनिएगा चंद गजलें। मिंजरा कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30। शाम 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज जल संरक्षण तकनीकों के विषय पर बात होगी। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विख्यात निर्माता निर्देशक लव रंजन की फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर रिले किया जाएगा कार्यक्रम अनुगूंज। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रविवासरीय संगीत सभा रात 10:00।

आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा शाम 7 बजे और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9। कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो और गुजरात के केसर सहित आम की अन्य प्रमुख किस्मों की चर्चा की।
1: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के तीन नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड पर जीत मिली है। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। उन्होंने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया।
2: 3 नगर निगमों में, धर्मशाला, मंडी और सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और विशेष रूप से सोलन में इतिहास हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 काउंसलर जिताकर, और जो 11वां काउंसलर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, मैं कह सकता हूँ कि 11 काउंसलर जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सोलन की प्रबुद्ध जनता का, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं का, और ये इस बात का द्योतक है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से परचम लहराएगी और जीत हासिल करेगी।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। प्रदेश में जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटों पर हुए मतदान की आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई। इनमें से अधिकतर सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और शेष बची सीटों पर भी मतगणना अंतिम चरण में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। पेशे खिदमत हैं चंद गजलें।

0: चंदन दास की गाई रिहर्सल अभी आपने सुनी।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट रुपीज 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट रुपीज 4.42 लाख ओनली।
2: विथ रुपीज 1,999 डाउन पेमेंट एंड रुपीज 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट रुपीज 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट रुपीज 4.42 लाख ओनली।
2: विथ रुपीज 1,999 डाउन पेमेंट एंड रुपीज 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: गजलें आप समाज फरमा रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ भर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
3: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: गजलें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

अभी आप सुन रहे थे गजलें। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मिंजरा।

कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारिया ही भैनों का स्वागत है। तो दिखा भाई अज तुहां सारिया कन्ने ही रूबरू आदी तुहां दी अपनी सखी अपनी भैन लक्ष्मी कने कार्यक्रम च तुहां सारिया का ही मैं स्वागत करती है। अज का जिहड़ा कार्यक्रम है ये खास अहां दीआं भैणां वास्ते हुंदा कने इस विच पूरी कोशिश हुंदी कि अहां दीआं भैणां ही हन है रूबरू आउण हन है जुड़न, लेकिन कुछ कारणां ते अजकल अपनी भैणां ने गलबात नहीं करी पा दे तां जियां कार्यक्रम चलना तियां तिन्नी चलते रहना तो इसी कोई भी सुनी सकदा, चाहे घरे से अहां दे बजुर्ग हैं बच्चे हैं अहां दे भाई हैं तो अहां दीआं भैणां भी सौगी सौगी कार्यक्रम तो सुनदियां ही हैं कजो कि तिन्हें पता भी ये तिन्हां दा इक अपना खास कार्यक्रम है। तो भैनों दिखा भई अहां उम्मीद करदी हां भी तुस अपने घरे सारियां राजी खुशी होनियां ने कने अपने परिवार विच मस्त होनियां ने, मस्त होना भी चाहिए कजो कि सारा दारमदार जिहड़ा घरे दा सै अहां दीआं भैणां दे सिरे पर हुंदा। एक तां तिन्हां अपना घर संभालना हुंदा, दूआ तिन्हां चुल्हा चौका संभालना हुंदा कने कई अहां दीआं भैणां सीआं ने से घरे ते बाहर भी बड़ा कुछ संभालदियां। तो दिखा तिन्हां दे सिरे पर बोलिया बड़ी जिम्मेदारी हुंदी कने से बड़ी बखूबी तिहा जिम्मेदारी है जो भी निभांदियां। तो अहां यही करना पई अहां दीआं भैणां हमेशा स्वस्थ रहन, समझदार रहन कने अपने परिवार सौगी सौगी अपना भी ध्यान रखन, अपने सारे कम्मां बड़े अच्छे तरीके ने निपटान। तो इस ते बाद तुहें ले चलना है मैं एक पहले रौनका ही तरफ, फिर तिंगी ये जिहड़ियां गल्लां बातां ने चलदियां रहनियां ने। तो जुड़े रहने अपने इस कार्यक्रम मिंजरा कन्नै।

जी ता दिखा भई बोलिया घरे होने वाले लोभी दूर, पर अह गल करा दे अज अपनी भैणा ने इं कहो कि अज थोड़ा हाँ अपने भैणा ने फोन दे माध्यम ने नहीं जुड़ी सके, ता ये कमी जड़ी है से अहाँ अगे पूरी करनी है, कने थोड़ी देर गल करनी है अह अपनिया भैणा अपनिया सखियां दे बारे च, जियां दिखा महिला सशक्तिकरण दी। ता इसका सीधा ही सरल अर्थ है भई महिला जड़ियाँ अहां दी भैणा ने तिना दे जीवन ने जुड़े हर छोटे बड़े फैसले लेने दी तिन्हों पूरी आज़ादी देना। कने एक महिला जिहड़ी सै शिक्षित होंगी तां सै आपू ही शिक्षित नहीं होंगी बल्कि सै पूरे परिवार जो शिक्षित बनाती। तो गलाने का मतलब है कि घर विच अहां दी बेटी अहां दी भैन अहां दी महिला जिहड़ी है सै जरूर शिक्षित होना चाहिए, तिस ते दिखा समाज का निर्माण होंदा। कने अज अहां दीआं भैणां अहां दीआं सखियां हर क्षेत्र विच मतलब अहां दे भाइयों का कने मर्दां दा मुकाबला करा दीआं। गल करिए तो दिखा हूँ चुनावों का दौर चलिया था तो तिथु भी तिना बड़ी चढ़ी करी भाग लिया, कने बड़े ज़्यादा ग्रां विच सुनने मिलना भी अह दियाँ भैन अह दियाँ सखियां चुनाव जीतियां। कने दिखा तिना घर तो चलाना ही सौगी सौगी तिना अपनी पंचायत भी चलानियां ने, तो बड़ी खुशी की गल है भई हूँ सह दायरा एक रसोई दे चौंके तक ही नहीं रही है बल्कि सह दायरा हूँ बड़ी दूर तक पुजी चुका है। कने अज महिला अह दी भैणा कुछ भी क्षेत्र में कटनी है। गल करिए खेतीबाड़ी दी तो खेतीबाड़ी दे कम्मा विच भी अह दियाँ भैणा अह दियाँ सखियां छोटे मोटे लाड़ूआं सगाड़ूआं ते तो शुरुआत करा दियां ही हैं। कन्ने कन्ने से बड़े बड़िया कोर्सां करी करी बड़े लखां कन्ने हज़ारां विच भी खेतीबाड़ी दे जिहड़े कम्म हैं तिन्हें बधा दियां। कन्ने बड़े बड़े तिना कई फार्म खोल्यो, कई ऐसे कम करा दियां जियां खुंभ खेती हुई डेयरी का कम कराइयां, तो तिथु से अगे चार माणुआं जो रोज़गार भी दिया दियां, कने अपना नाँ जिहड़ा से बड़े उच्चे स्तर तक पहुँचा दियां। कने कई बारी तुहां सुणदे होणे पे अहां दे जिहड़ा ये कार्यक्रम है इत्थों भी अहां दियां सखियां पुजियां आउंदियां, चाहे से खेतीबाड़ी दे माध्यम ते चाहे से कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धि तिना हासिल कीती होवे, इस माध्यम ते से कुछ ना कुछ रूप विच अहां दे टियाले पर या अहां दे इस जगह पर पुजदियां ने। कने तुहां ने अपने अनुभव सांझे करदियां ने तो तुहें भी कितनी खुशी होंदी पे दिखा अहां दियां सखियां अहां दियां भैणां अज हर क्षेत्र विच अपना नाँ रोशन करा दियां। कने ये गल्लां बातां अगे भी जारी रहनियां ने। कने महिला ने जुड़ियां जिहड़ियां गल्लां चाहे तिन्हें सशक्त बनाने की गल होवे, तिन्हें पढ़ाने लिखाने की या घर गृहस्थी संभालने की गल होवे, सब भी अहां तुहां ने करदे रहना है। कने फिर दे शामिल करना अपने कार्यक्रम मिंजरां विच इक होर लोकगीत।

0: रीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
4: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान कन्नै बागवान भाइयों जो जोधा राम दी राम राम किसान साथी अज टियाले विच मेरे कन्नै है
1: शन्नो ताई।
0: हाँ तो संडो ताई जी क्या हाल चाल हैं थोड़े?
1: बड़ी मेहरबानी तुहांदी कन्नै अपने श्रोतियां दी भी इन्हां दियां बोलिया दिले दियां ही होंदियां ना तां अरदासां तां दिखां हां स्वस्थ टियाले पर पूजदे।
0: बिल्कुल जी सही गल है।
1: कन्नै आहे निहालदे रहिंदे पे टियाले पर अज कुणी पूजना है तां कल कुणी पूजना है कन्नै बड़े बड़े दिनां कई बार नहीं भी आए होंदा टियाले पाहे।
0: हाँ जी बिल्कुल जी करें दिखा कार्यक्रम है किसान बाणी कन्नै इस विच जिहड़ा असां अजकल असां गलबात करदे ने अपनी खेती बाड़ी दी कन्नै कुछ एक जानकारी जिहड़ा असां अपनी योजना दे बारे च भी दिंदे ने।
1: जी
0: तो अजकल जिहड़ा असां आंदे किसान साथी जिहड़ा असां धान दी खेती वखी जिहड़ा असां थोड़ा रुख करा दे कन्नै कोई ऊर लगा करदे है ना जी।
1: बस लगे हो तैयारियां
0: हाँ
1: कई सोचा पे हो भई कुण दे किस्म लगानी है।
0: हाँ बिल्कुल
1: कन्नै पट्टियां तां बिल्कुल साफ सुथरियां हो ही हैं ना पर जड़ा ऊर ऐसा है कई देई ते कने कई हली मैं बोला ही सोच बचारा पियो।
0: बिल्कुल जी कन्नै असं अच्छी तरह जानते हैं कि धान की खेती वास्ते जरा सारे जो जरूरत होंगी है पानी की
1: बिल्कुल
0: कन्नै पानी जरा सा बरखा पर ही असं ज़्यादातर निर्भर करते हैं लेकिन फिर भी अगर सांझो जरा सा अगर पानी बचाने की जरूरत हो तो पानी किन्ने किन्ने तरीके ने हाँ बचाई सकते सानू
1: बिल्कुल
0: बताए
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना जी। जी देखिए वर्षा का

0: जल जेह्ड़ा सा असां रोकी सकदे कन्नै किट्ठा कर सकदे आ। जेल्लू बी बरखा होंदी ऐ ते बरखा जो जेह्ड़ा सा असां पानी दे टैंक च पाई करी कुएं या भूमिगत संरचना च जेह्ड़ा सा वर्षा दा जल जेह्ड़ा सा इकट्ठा कर सकदे
1: करी
0: न।
1: सकदे।
0: दूसरी है ड्रिप सिंचाई, पौधें की जड़ा तक जो बूंद बूंद पानी पहुँचाई करी पानी की असं बचत कर सकते हैं ना जी। पानी
1: बिल्कुल
0: की
1: जी,
0: बचत करना भी पानी जो बचाना ही है। कन्नै एक हुंदा दिखा स्प्रिंकलर सिंचाई, फवारे दिया तरह ही पानी का छिड़काव करके कम पानी जो सिंचाई करनी, कन्नै जितना की जरूरत है उतना कर ही पानी जो असं इस्तेमाल करना है।
1: बिल्कुल। कन्नै दिखा पहले था कुल्ला खड्डा पर ही निर्भर थे, पर हूँ बड़िया नोई नोई तकनीक आई हैं पानी संरक्षित करने दियाँ।
0: हाँ जी
1: लोग दिखा ऐसे ऐसे तरीके ने पानी खड्डा ना डूगे नालों ते भी चुकी लै दे,
0: बिल्कुल
1: तो सह तरीका ऐसे ऐसी चली पी है। तो मैं बोलती इन्हें तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो हाँ पानी जो बड़े लंबे समय तक संरक्षित कर सकते
0: हाँ।
1: हैं।
0: कन्नै तालाब कन्नै जलाशय का निर्माण भी करके वर्षा दे पानी जो असां इकट्ठा करने वास्ते तालाब पोखर कन्नै छोटे छोटे बांध जड़े से बनाए सकते हैं, है
1: जी
0: ना जी। कन्नै एक है चेक डैम बनाई करी, देखा असां बड़ी सारी चीज़ें दसा दे इस बीच तुहाडे इलाके दे हिसाब जो तुहानू सही लगता है किस तरीके ने तुहां जड़ा सा पानी का बचाव कर सकते। चेक डैम बनाई करी भी छोटे बांध बनाई करी असां बरखा का पानी भी जरा सा रोकी सकते, कन्नै भूजल दे स्तर जो असां बढ़ाई सकते हैं।
1: बिल्कुल। दिखा हूँ गां गर्मियां भी बढ़ दियां, कन्ने पानी की कमी गर्मी विच जरूर हर इलाके विच हो जाती, चाहे खेतीबाड़ी की गल करा चाहे हाँ दे कोई उद्योग धंधे न जेडे
0: जी
1: पानी पर भी निर्भर हैं, तो तीस हिसाबे ने भी पानी की कमी महसूस ना हो इस वास्ते अहें पानी इकट्ठा करके रखना या पानी का बचाव करना बड़ा जरूरी है।
0: बिल्कुल जी
1: चाहे तुहां खूह की गल कर लिया, बोड़ियां की गल कर लिया, पुरानी बोड़ियां मैं तो बोलती हूँ चाह कभी तिन्ह नसाणियां भी नहीं रहनियां न,
0: हाँ बिल्कुल जी
1: पर जहाँ चाहन कने गांह दे नौजवान युवा चाहन तो तिना पुरानिया खूह बोड़ियां जो भी द्वारा साफ सुथरियां करी के जल जो संरक्षित करी सकदे।
0: हाँ। कन्नै जमीना दे पानी जो भी असां जेह्ड़ा सा भरी सकते दोबारा जमीना दा पानी जेह्ड़ा है तुसी असां बचाई करी जेह्ड़ा ऐसा है तिस दे भूजल जेह्ड़ा सी हां बोल से दे भंडार जो हां बढ़ाई सकते। कन्नै एक मल्चिंग हुंदा मिट्टी जो घास पत्तियां आदि ते ढकी करी नमी बनाए रखना। कन्नै एक हुंदा जल दा पुनः उपयोग, घरेलू कार्य वास्ते असां पानी दा दोबारा दोबारा इस्तेमाल भी ऐसा कर सकते,
1: करी
0: पानी दा
1: सकदे।
0: बचाव कर सकते। वृक्षारोपण करके अधिक पेड़ लगाई करी जल संरक्षण कन्नै भूजल दे स्तर जो असां बधाई सकते हैं। कन्नै रिसाव भी रोकना, नलां दा नलके होंदे पाइप होंदियां टंकियां होंदियां ते ना चे पानी दा रिसाव होंदा रहिंदा पानी बहदा रहिंदा कन्नै तिस ते पानी दा नुकसान होंदा, तो तित्थों भी असां रिसाव रोकी करी भी जेह्ड़ा सा पानी जो बचाई सकते। ये कुछ तरीके ने जिससे अहां पानी दा बचाव कर सकते।
1: करी सकदे
0: कन्नै एक
1: बिल्कुल।
0: कुछ है कि ऐसी तकनीकां ने जिससे कि अहां पानी जो बचाई करी जेह्ड़ा सा असां अपने भविष्य वास्ते संग्रहित कर सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: कन्नै ये काम जरूरी कोई पंचायतां या सरकारां दे नहीं होंदे, कुछ काम ऐसे होंदे जे अहां दे आम नागरिक दे सहयोग कन्नै पूरे होंदे,
0: हाँ
1: तो इस विच है अहां सब ना जो सहयोग देना चाहिदा पे कोई जे कूल टूटी हुआ या कोई बोड़ी खराब है या कोई खड्डा ते जियां पानी दी नी बना दा हिसाब किताब, तो ग्राएं दे लोग इकट्ठे मिली करी भी इतिहा चीज़ा जो बोलते थोड़ा बहुत सुधारी सकते
0: हाँ जी
1: जितना तिना ते हो सके करें। जालू

0: किसान साथी उस लोकगीते दे बाद जिहड़ा ऐसा समय होया जानकारी दा है ना जी तां सन्नू ताई दी लगाई दे तो कोई जानकारी कहिंदा सुन दे
1: बिल्कुल आवाज सुन दे ने गलबात
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए चाहे वह अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने की गई गलबात होवे उसी कड़ी विच अज मेरे कन्ने जुड़ा करदे ने एक उन्नत किसान जिहड़े कि मशरूम कन्ने इहदे सोगी मछली पालन दा काम जिहड़ा सा करदे हन ओवा करदे ने इन्हां कन्ने गलबात राम राम जी
3: राम राम जी
2: जी अपना नाम दसा
3: राम सिंह सपुत्र श्री हरबंस लाल जी
2: हाँ जी
3: ग्राम देरिया
2: अच्छा
3: मीरपुर ब्लॉक कांगड़ा पौंदा घरे दा
2: हाँ जी
3: इत्थे दा ब्लॉक जे है साडा रैत ब्लॉक पौंदा
2: अच्छा यानी कि घर तोहां दे देरिया ने
3: घर देरिया
2: कने इस जगह दा क्या नाम है
3: इस जगह अरनी
2: अरनी
3: हां डुगियारी
2: अच्छा ता मशरूम दा काम करदे है ना
3: मशरूम दा प्लांट भी लाया जी
2: हां जी
3: कने मशरूम दा भी करदे कन डिंगरी दा भी करदे
2: अच्छा
3: मछली पालन दे टैंक बनाए हे मैं 5000 स्क्वायर मीटर दे
2: हां जी
3: कने बगीचे भी लगाया कने
2: अच्छा
3: कने सब्जी दा काम भी करदे वाले खेती
2: अच्छा ता सबसे पहला गल करदे है ना मशरूम दी किन्ने साल होई है मशरूम दा काम करदे
3: मशरूम जे 3 साल होई है प्लांट लगाई
2: अच्छा किन्ने की बैग ते शुरू किता हा तोहां
3: मैं शुरू ते जिस टाइम ते 400 बैग ते स्टार्ट किता हा
2: अच्छा कने इस वेले कितना की बैग तोहां
3: लगा इस टाइम कोई 600 की बैग है इस टाइम खत्म हुई है
2: हां जी
3: पर हुन इस ते बाद ज्यादा की आजकल गर्मी च बड़ा घट सी बिकदा
2: हां जी तां
3: 2 महीने गैप पाई देना है
2: अच्छा
3: जून जुलाई कहिंदे इस ते बाद अगस्त ते पेले आउणे कहिंदे सितंबर ते भी सारे चालू हो जाणे
2: अच्छा जेड़े मशरूम दे जेड़े बैग हुंदे ना इहदी तोहां भर्ती आपू ही करदे की बणे बणे
3: मंगवांदे ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਓ ਕਿਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਕੀ ਭੇਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ
2: ਅੱਛਾ
3: ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬੈਜਨਾਥ ਲੱਗਿਆ
2: ਅੱਛਾ
3: ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਬੈਜਨਾਥ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ
2: ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੋਂ
3: ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਲ ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੱਲਦਾ
2: ਅੱਛਾ
3: ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ 7-7.5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਜਨਾਥ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ
2: ਅੱਛਾ
3: ਪੂਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟੋਲੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ
2: ਅੱਛਾ
3: ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ 20 ਕਿਲੋ ਪਰ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ
2: ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦਾ
3: ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 110 ਰੁਪਈਏ ਪਈਆ ਦਾ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਮੈਂ 110 ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਲਾ ਪਾਈ ਕਿ 125 ਰੁਪਈਏ ਬੈਗ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ
2: ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਨਾ
3: ਹਾਂਜੀ 92 ਰੁਪਈਏ ਬੈਗ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬੈਗ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 22-23 ਰੁਪਈਏ ਪਰ ਮਤਲਬ ਜੀਪਾਂ ਦਾ 200 ਬੈਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਈ ਜਾਂਦਾ 11-12 ਰੁਪਈਏ ਪਰ ਬੈਗ ਸਹਿ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਮਤਲਬ
2: ਅੱਛਾ
3: ਜੀ ਜੀ
2: ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹਾਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ
3: ਜੀ
2: ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਹਿ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ
3: ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ 17-18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ
2: ਹਾਂ
3: ਕੇਸਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ
2: ਅੱਛਾ ਕੇਸਿੰਗ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
3: ਕੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰੀ ਆਪੂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੇਸਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪੂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ
2: ਅੱਛਾ
3: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟਾਣੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਿਨਾ ਬੈਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ
2: ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ
3: ਹਾਂ ਟਾਈਪ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ
2: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ
3: ਜੀ ਜੀ
2: ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਤਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਗੇ 'ਚ
3: ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਦਵਾਈ 3.5-3.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
2: ਅੱਛਾ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ
3: ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਕਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ
2: ਫਿਰ
3: ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਗ
2: ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੈਗ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
3: ਜਲ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਚੂਆ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
3: ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਾਈਂਦੇ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਫਿਰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਈ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਤੇ ਪੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਏ ਕੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ
3: ਹਾਂਜੀ ਇਹ 2008 'ਚ 9 'ਚ 10 'ਚ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਇਹ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀ 27 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ
2: ਅੱਛਾ
3: ਜੀ
2: ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ ਕੋਣ ਖੱਡ ਬੱਕਰੀ
3: ਮਾਂਜੀ ਖੱਡ
2: ਮਾਂਜੀ ਦੇਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
3: ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲਾਈਓ ਇੰਜਨ ਵੀ ਰੱਖਿਓ 2 ਇੰਜਨ ਰੱਖਿਓ ਮੋਟਰ ਲਾਈਓ ਟੂਲੂ ਪੰਪ ਲਾਈਓ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਉਪਰੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਇਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ बिजली वाली फ्लड जला फ्लड देना खुल राई थी सारी।
2: अच्छा अच्छा जी, जल तुहां ये शुरू किता है ना मशरूम दा काम?
3: जी जी जी।
2: इससे पहले तुहां कोई सिखलाई ले ही?
3: हाँ जी, हाँ मैं ट्रेनिंग की दो बारी मतलब 16 दिन की ट्रेनिंग जी।
2: हाँ जी,
3: मतलब मशरूम प्लांट बारी जगह की ना प्लांट है बड़ा।
2: हाँ जी,
3: एक बारी पालनपुरी भी ली मैं मतलब।
2: अच्छा,
3: तीन बारी ट्रेनिंग की मैं जी।
2: अच्छा, इस ताइया जी कोई अनुदान वगैरह भी मिलला विभाग ते?
3: 8 लाख रुपया सब्सिडी सांझे दिंदा विभाग जी।
2: अच्छा,
3: ये मतलब 21,88,000 रुपया औसत बैदा मतलब इधर टोटल अमाउंट था दुबारी मतलब प्लांट।
2: हाँ जी।
3: अच्छा, तो इस बीच जो है सर दुबारी 8 लाख रुपया गवर्नमेंट का होंगे, शायद 3 साल के बाद पाते अल दिता नहीं है।
2: अच्छा
3: हाँ जी।
2: अच्छा, इसके बाद तुम्हारा उत्पादन तैयार हो गया
3: जी जी,
2: फिर ये कुछ बेचना कुछ हो जाएगी?
3: इंजा होंगे कि दुबारी के भी तो मंडी वगैरह ले जाते।
2: हाँ।
3: मैं मंडी नहीं लेता।
2: अच्छा,
3: मैं करता कि दुबारी मैं राती तोड़ने मतलब राती तोड़ साफ कर रखने प्याग तड़के मतलब पैकिंग करने के तोली लेने के मैं दुकाना दुकाना बेची लेता।
2: अच्छा,
3: जो नहीं बिकन।
2: हाँ।
3: दुकाना दुकाना जो फालतू जल हो जाते तो मैं मोटरसाइकिल पर चक्कर भी लगा ही मैं लोग बेची लेता।
2: अच्छा, नजदीक कौन बाजार पाँगा तुम जो
3: नजदीक गगल वगैरह ही?
2: अच्छा, बिकी जाता भी है ना?
3: हाँ जी, बिकी जाता दुकाना दुकाना वाले दे देंगे।
2: हाँ जी,
3: बाकी फालतू ज्यादा हो जाता तो हम ग्रां च भी चक्कर लाई दे मोटरसाइकिल।
2: हाँ
3: पाई
2: जी। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद गल करते थे तो हाँ शुरू जिक्र किया कि मछली पालन का भी जोड़ा था तो हाँ काम करते हैं
3: जी जी,
2: जिहड़ा ये तालाब मैं देखा करता है।
3: हाँ जी।
2: एक कितने बाय कितने तालाब है
3: ये? जी मतलब टोटली 5,000 स्क्वायर मीटर दे टैंक बनाए ही मैं।
2: अच्छा,
3: मतलब गवर्नमेंट दे थ्रू बनाए
2: ही।
3: 1.5 लाख रुपया इस बीच गवर्नमेंट दी सब्सिडी भी मिली ही मुझे।
2: हाँ जी।
3: तो मतलब मेरा तो अपना खर्चा कम से कम 7-8 लाख रुपया आई है हरी पैर।
2: हाँ जी।
3: तदन तो लेके दीवारी मतलब ये चले हो।
2: हाँ जी।
3: एक बारी फ्लड पे भी थला एक बड़ा टैंक जो इससे भी बड़ा टैंक था सर मतलब ड्रेज साफ हुई।
2: अच्छा, नहीं तो ये यानी कि कच्चा है आखे वक्त की दीवारा कच्चियां दी दियां
3: है? दीवारा कच्चियां रखना इरी बात ही पौंदी।
2: हां जी,
3: कि मछली जे है खुद फीड तैयार कर लंदी कुछ।
2: अच्छा,
3: कच्चा होता
2: कच्चे। अच्छा।
3: पक्का होता दोबारी फीड टोटली फीड ही पाना पौंदी ते।
2: हां जी, तो इस टाइम तालाब च मछलियां है निश्च?
3: इस तालाब च हां जी, इस भी है थल्ले वाले के थल्ले बनाया तालाब।
2: अच्छा,
3: ये दो तालाब ठीक ने बाकी त्रीए तालाब रुई जाए।
2: निकली जाना है
3: रेता पर रेता कम से कम पानी भी 3 फुट आई था।
2: तलाई जेड़ा पानी है जमीन का निकलिया की दराय का?
3: सब कुडान पानी है।
2: अच्छा,
3: इस तलाई ची निकले ताई में मछली टैंक बनाए।
2: अच्छा,
3: नीचे भी मतलब टैंक मतलब जमीन च निकले ये भी जमीन च निकले।
2: हाँ जी,
3: नीचे बनाया हा उस बीच भी जमीन च निकले।
2: अच्छा,
3: सारे पानी को डानी था सारा।
2: अच्छा, तो बीज साले साल पांदे की एक बारी पाया टैंक सही
3: एक बारी पाई की भी दबारी मतलब चले जाता फिर साले साल दबारी मतलब इस तरीके ना होंगे कि दबारी बीज तैयार होंगे फिर इस बीच सैटिंग करना पौंदी इहदी।
2: हाँ।
3: कि जियां कि दबारी समय के मुताबिक जलो सीजन आई जाना गर्मियों का अप्रैल महीने।
2: हाँ जी,
3: तह नर मादा अलग अलग करी दी मतलब।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो पहचान कि करनी
3: पहचान इं कर दे हाँ। कि मछली लैनी कि इसके पिछे दबारी हाँ इस तरीके प्रेस कर दे।
2: हाँ।
3: जिस खून निकले।
2: हाँ।
3: तो इस बिच ये मादा।
2: हाँ जी,
3: कि जिस किस मतलब सफेद पान बीर टाइप निकलना।
2: हाँ।
3: हाँ, नर सै अलग कर देने नहीं तो दबारी मतलब नर मादा कट्ठे होने बच्चे खाई जाते।
2: अच्छा, तो इस ताइया तो बड़ी जड़ी सह मेहनत करना पौंदी
3: नी जाले सेट करना पौंदा।
2: अच्छा, कि तालाब खाली करना पौंदा?
3: ना तालाब नहीं खाली करना पौंदा,
2: थोड़ा पानी घटाना पौंदा होना ना?
3: घटाना नहीं, कि साइड जाले लाई दी होंदे
2: थल्ले। अच्छा,
3: थल्ले पत्थर लगाए देने।
2: हाँ जी,
3: जाले लगाए देने।
2: हाँ जी,
3: उतने एरिए पूरी मतलब वही मतलब।
2: अच्छा,
3: जिस टाइम जी मतलब प्रेग्नेंट हो जाती मच्छी ना।
2: हाँ।
3: फिर चाहे मच्छी ये अलग करी दे ताकि तेने अंडे देने होंगे।
2: हाँ।
3: नहीं तो दुई मच्छी जी बड़ी नर जे ऐसा है।
2: हाँ,
3: या दुई मच्छी और भी हो मादा हो नर हो खाई जाती है।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कुछ लिया तो हाँ बीज जल शुरू किया है?
3: हाँ, दिवाली गुप्त गंगा वाले लिया मतलब फिशरी डिपार्टमेंट वाले।

0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो इदी भी तो हाँ ट्रेनिंग ले ही होड़ी मछली
1: हाँ
0: पालन दी है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: कुदू ले
1: ट्रेनिंग
0: ही है।
1: कांगड़े ले ही जी मतलब
0: अच्छा
1: हाँ जी दोबरी लियो ट्रेनिंग ही दी है।
0: अच्छा जी ये मछली है जलू निकालनी है
1: हाँ जी
0: ता कितने टाइम बाद निकाल दे कि रोज ही निकाल दे
1: ले
0: जलू
1: जिस
0: मांग आई है तभी
1: हाँ
0: निकाल इन दे।
1: इं नहीं निकाल दे दीवारी मतलब हाँ ज्यादा कोशिश करते कि दीवारी मतलब जिन्हें कि मतलब डैम बंद हो चलता
0: हाँ
1: है उस
0: हाँ
1: टाइम निकालनी यहाँ तो सारा रेट ये है ठीक मिली जाता।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बरसाती।
1: बरसाती
0: हाँ
1: मतलब
0: जी
1: रेट ठीक मिली जाता
0: हाँ जी
1: कने बिकी जाती
0: हाँ
1: आसानी
0: जी हाँ
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: अच्छा तो कुछ पता है कि कौन किस्म की मछली है तो हाँ भाई टैंक च।
1: हाँ मतलब जेड़े पहले पाई थे दबारी कॉक फिश पाई ही मतलब
0: अच्छा
1: कने और भी के भी माँ शेर भी पाई दी बाकी और भी पाए
0: अच्छा
1: रंगीन भी पाई दी कुछ
0: हाँ तो इन्हें जी कुछ दाना भी पाते
1: दाना तो ये कच्चे तलाए से अहा तो नहीं पाए अजी तक जी मतलब सच्ची गल है क्लियर
0: हाँ
1: इं जेड़े पहले गोबर वगैरह जेड़े पाया
0: हाँ
1: कने चोकर वगैरह जेड़े पहली बारी है पाई हुए
0: हाँ जी
1: उस टाइम ही है पाई कने तस्ते बाद कच्चे तलाए से अपने आप ही मतलब फिर तैयार कर लेंगी मतलब मच्छी
0: अच्छा अच्छा जी हाँ कितना टाइम हुआ तो हाँ जो इसे तालाब बनाए हो
1: इन्हें हुई है चौथा साल चले हुए।
0: चौथा साल
1: हाँ जी
0: कुछ ऐसा दसा कि तो हाँ जल मछियां पकड़ियां था कितने जिन की बड़ी ते बड़ी मच्छी कितनी इस।
1: पाँच पाँच छः छः किलो दी भी होगी
0: अच्छा
1: एक
0: छह
1: दिन
0: किलो
1: में
0: तक पकड़ी तो हाँ ना देखा कहा जल इतनी बड़ी मछली तो हाँ पकड़ी होनी ना
1: हाँ
0: तो हाँ दे चेहरे पर भी जड़ी सा एक रौनक आई होगी नहीं है ना।
1: रौनक
0: इस ते सौगी चाहिए तो हाँ दसिया कि बगीचा भी तो हाँ लगाया
1: हाँ जी
0: क्या क्या लगाए हो बगीचे च।
1: बगीचा मेरे अखरोट चले हो
0: अच्छा
1: जापानी फल भी चले हो
0: हाँ जी
1: नींबू चले हो
0: अच्छा
1: पलमन चले हो
0: अच्छा
1: आड़ू चले हो पंजा सठ अमरूद भी आने उसके बाद मैं 243 अनार थे पर
0: अच्छा
1: अनारा नारा मैं उखाड़ी ते कि अनार की संभाल साले ते नहीं हुई मैं सही ढंग ने कि किसी जो दिवाली फुल पाने बाद कने स्प्रे जे है हर 15 दिन ते बाद स्प्रे करना ही पौंदा
0: हाँ जी
1: जे स्प्रे ना करिए तो बरखा पेगी तो दुमे दिन फिर स्प्रे करना पौंदा जे
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: करिए तो कीड़ी जी है तुम डंगी जाती ना मतलब अंदर अनार जे खराब हो जाते।
0: हाँ अच्छा तकरीबन तो हाँ लगभग सारे फलों के
1: हाँ
0: पौधे जड़े से लगाए हुए ना।
1: हाँ काफ़ी ज़्यादा लगाई जी हाँ
0: अच्छा
1: कहीं दूसरी गल ये है कि दिवाली मतलब इतनी मैं ये प्लांट जो है ऑर्गेनिक रखे मैं इस केमिकल वगैरह बिल्कुल नहीं पाँगा
0: अच्छा
1: घा वगैरह जो है मैं लेडीज लगा इतनी दिवाली तिने तो घा कटाई लेंदा
0: हाँ
1: जिन्हें उन्हें सब्जी लगाई हो तो घा जो ऐसा मैं हाथों कढ़ना हाँ मतलब
0: अच्छा
1: ये नहीं करते कि दिवाली मतलब दवाई पाई थी पहले हम छली पाई हो छली है घा हाँ हाथों ही डालना है
0: अच्छा
1: मतलब ये नहीं करना कि दिवाली हाँ छली दवाई पाई थी कि
0: हाँ
1: ना फिर गुडाई नहीं होनी फलाना नहीं मतलब वहाँ छुट लेगी जिस टाइम ही मैं प्लाउट लिया है
0: हाँ जी
1: उस टाइम ते ले की गाली का दब्बर था
0: हाँ जी
1: खड किस्म ले थी
0: हाँ जी
1: फिर मैं जेसीबी ने काफी कम से कम कुछ 40-42 लाख रुपया खत्म किया तेरी बार
0: अच्छा
1: मिली तो सस्ता गया
0: हाँ
1: प्लॉट
0: जी
1: जिस टाइम लिया था मैं कोई 28-30 हज़ार रुपये पर कनाल ले लिया है
0: हाँ जी
1: कने उसके बाद दुबारी
0: चलो
1: फिर मैं यही पर मतलब
0: चलो
1: साइया कनाल ही पर मतलब ज्यादा नहीं था दुबारी कोई 42-43 लाख रुपये और खर्चे
0: हाँ बराबर करनी है
1: पहले बराबर की खड्डे पारे तिस्ती जो टोला ही पत्थर इतने मैं पत्थर बेच दिता कुछ
0: हाँ
1: मिस्त्री लगाए बनाने वाले पत्थर
0: हाँ
1: बनाने वाले तिन्हें खाडू बनाए की बेच दे रहे
0: हाँ जी
1: तहन 8-10 साल खाडू भी बनाए की बेच दे रहे पत्थर भी बेच दे रहे फिर जमीन लेन करी थी तो नजर मारा जमीन
0: हाँ
1: ये बन बनी हुई कहने कागजा बिच भी बंदा रही बगीचा बनी हुई
0: बिल्कुल हाँ जी ता जी हूँ
1: हाँ
0: सब्जी वहाँ चलते ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या क्या लगाया इस टाइम
1: इस
0: सब्जी।
1: टाइम मैं बैंगन लगाई जी
0: हाँ जी
1: टमाटर लगाए हो टमाटर कन्ने दवारी मिर्चा है उसके बाद करेला था इस पहा लाया
0: अच्छा
1: खीरा लगाया डानियां लगाइया बाकी मैं एक ऑर्गेनिक तलड़ी जब मैं निकालता दबारी पूरी है बारिश दबारी ये लगाई हो अगे देख नज़र मारनी तो हाँ
0: हाँ
1: तो ये तलड़ी निकली जाती नहीं जल 5-6-7-7-8-8 क्विंटल निकली गिरी
0: अच्छा
1: ये साड़ी 150 रुपये पर किलो बिकी जाती मतलब
0: अच्छा अच्छा
1: ये भी
0: जी
1: हाँ ऑर्गेनिक रखी ये लौंकुएं बेली लगाइया ये भी ऑलरेडी ऑर्गेनिक होंगी ये इसी यूरिया इं भी सड़ती है तो यूरिया जो है तुआ करी जाता इसी सुखी जाता मसकाई जाता बेली जेड़ा भी कम करा ऑर्गेनिक ही करा दे बारी मतलब हाँ इसी केमिकल वगैरह
0: बिल्कुल
1: कोई
0: हाँ
1: स्प्रे
0: जी
1: स्प्रू वगैरह कभी नहीं करती
0: हाँ
1: जाती।
0: राम सिंह जी तो हाँ जो कुदू ते प्रेरणा मिली कि ऑर्गेनिक ये करना प्राकृतिक तरीके करना जड़ा सा सब्जी तैयार की
1: देखा
0: जाए।
1: जी गल के हाँ महा विश्वविद्यालय अदारी पालमपुर भी सांझो सदे भी रेंदे
0: हाँ
1: कने अहां भी जाते रहते के बी के आले सांझो ले जाते
0: हाँ जी
1: कई बड़ी हर जगह दबारी जायका आले नींदे रहे सांझो
0: हाँ जी
1: मतलब कई जगह दबारी जल कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम होना तभी
0: हाँ
1: नींदे रहे
0: हाँ जी
1: कई बड़ी दबारी मतलब जिन्हें कि और कोई इतू साढ़े आल ज्यादा नहीं तो मैं साले दे 2-3 प्रोग्राम दबारी
0: जी
1: एग्रीकल्चर आले करी जायका आले करी
0: हाँ
1: एग्रीकल्चर
0: ये तो
1: आले करी
0: होंदे रहते हैं
1: ऑस्ट्रिया
0: ना।
1: हाँ आते
0: हाँ
1: रहते
0: हाँ
1: इतू अफगानिस्तान की टीम भी एक बड़ी मेरे आले थी आ चुकी
0: अच्छा
1: चीफ सेक्रेटरी भी आ आई हो दबारी मतलब जेड़े की सारे दबारी मतलब डिपार्टमेंटा दे हुंदे दबारी शिमला बैठे एज ए सीएम ही बोलदे ते नहीं सब इत्थों आई की बैठी हो दबारी मतलब
0: बिल्कुल देखा बड़ी खुशी दी गल है देखा जलो अहां दे किसान इतने बड़े स्तर पर जलो खेती करदे हैं ना। अच्छा तो जलो तुहां जी सब्जी तुहां बिल्कुल प्राकृतिक तरीके कन्ने तैयार करनी है
1: जी जी जी
0: जलू ये बेचनी है ता उसी रेट है के बिकी पांदी जी हां सोणिया की
1: पैसा नहीं मिलता पूरा सांजो जी
0: है ना
1: गल है कि पूरा मैं खर्चा पूरा नहीं हुंदा
0: हां जी
1: पर हां ए दिख दे कि गल है कि शुद्ध खाक ने शुद्ध खिला
0: हां जी
1: हां तिस बीच पैसा ही जिंदगी नहीं हुंदा
0: हां
1: सो इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग लास्ट इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट बट इफ करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग ता अपने करेक्टर जो हां इस तरीके मेंटेन रखिया कि ज्यादा नहीं अपने घर दे भी सारी सब्जी वगैरह जे खाते तो दबारी गल एक है कि शुद्ध मतलब सर्दी बीमारियों से बची रहना
0: हाँ
1: जी, जी। देखते कोई और भी खाता साढ़े अल तबारी से बीमारियों से बचिया रहा दबारी आदमी जी अपना रोजी रोटी बड़े आरामी चलाई लगा
0: जी हाँ जी
1: पर यह है कि होना तो मेहनत करनी पे
0: जी
1: कहना जी कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता प्रियमता
0: जी राम सिंह जी तुहां अपने खेतीबाड़ी के अनुभव अहां कन्ने साझा किए अपना कीमती समय तुहां अहां जो दिता बड़ी खुशी हुई तुहां कन्ने मिल के तुहां का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना, देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह, कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना और सोल कड़ी का सेवन करना उपयोगी है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है।
2: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी गयी। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील भी की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को एक वार्ड में जीत मिली है। मंडी के बहना वार्ड में लोगों ने स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया और यहां मतदान नहीं हो सका। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। कांगड़ा जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजों पर अधिक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनावों में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मिश्रित संदेश सामने आया है। धर्मशाला में भाजपा की इस जीत को स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा के प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांगड़ा की राजनीति में मुकाबला अभी भी बेहद रोचक और संतुलित बना हुआ है। मिशन 2027 की दिशा में दोनों दलों के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत साबित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2,400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2,300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में होने के दावे कर रही है, जो गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में लोग स्थानीय विधायक को देखकर वोट देते हैं। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मंडी में एक विजय रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये जनादेश प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है और जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 नगर निगमों के चुनावी नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है।
4: सबसे बड़ी बात तो है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर के ये जीत हुई है। लेकिन आज मैं इन सभी काउंसलर से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा, अगर कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, अब आपको पसीना बहाना है मंडी के बेहतरी के लिए, मंडी के विकास के लिए। हम मिलकर के काम करेंगे।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। इनमें जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1,669 सीटें शामिल हैं। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। 3 चरणों में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लगभग 81% मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जबकि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना, देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह, कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष लघु वार्ता। वार्ताकार हैं तेंजिन फुनचोग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी तेंजिन फुनचोग, और आज के इस लघु वार्ता में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि मानव जीवन, सामाजिक चेतना और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज 31 मई 2026 है और पूरी दुनिया में ये दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विषय रखा है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टबैको एडिक्शन, अर्थात तंबाकू और निकोटीन की लत के आकर्षण का पर्दाफाश करना। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और किशोरों को तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों की बढ़ती लत से बचाना है। श्रोताओं, आज दुनिया तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी है। विज्ञान ने असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद तंबाकू जैसी धीमी जहर आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को निकल रही है। ये विडंबना ही है, एक ओर हम स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी आदतों को अपनाते जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर को भीतर से खत्म कर देती हैं। तंबाकू की शुरुआत अक्सर शौक, फैशन, तनाव या मित्रों के दबाव में होती है, लेकिन समय के साथ यही आदत व्यक्ति की मजबूरी बन जाती है। शुरुआत में जो सिर्फ एक बार होता है वही धीरे धीरे रोज़मर्रा की ज़रूरत जैसा महसूस होने लगता है। तंबाकू केवल सिगरेट या बीड़ी तक सीमित नहीं है, आज ये अनेक रूपों में हमारे समाज में मौजूद है। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, ई सिगरेट, निकोटिन पाउच, गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला आदि, ये सभी तंबाकू या निकोटिन आधारित उत्पाद हैं। आधुनिक समय में कंपनियां युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए नए स्वाद, रंगीन पैकेजिंग और आकर्षक विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2026 के अभियान में विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई है कि तंबाकू और निकोटिन उद्योग नए उत्पादों को आधुनिक और कम नुकसानदायक बताकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं है। तंबाकू में निकोटीन सहित हजारों जहरीले रसायन पाए जाते हैं जिनमें अनेक कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल होते हैं। निकोटीन धीरे धीरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और व्यक्ति इसकी लत का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। शुरू में शरीर इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन बार बार सेवन करने से शरीर इसकी आदत बना लेता है। फिर व्यक्ति तनाव, चिंता या थकान के समय तंबाकू का सहारा लेने लगता है। श्रोताओं, धूम्रपान का सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। सिगरेट या बीड़ी का धुआं फेफड़ों तक पहुंचकर उनकी कार्यक्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है। लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न और थकान इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने पर यही समस्या फेफड़ों के कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, दमा और TB जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि तंबाकू दिल और रक्त वाहिकाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इससे उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग गुटखा, खैनी या जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं उनके लिए भी खतरा कम नहीं है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और जीभ के कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे देश में ऐसे अनेक मरीज देखे जाते हैं जिनकी बोलने की क्षमता प्रभावित हो जाती है या जिन्हें भोजन तक करने में कठिनाई होती है। सबसे दुखद बात यह है कि इन बीमारियों का उपचार अत्यंत महंगा और पीड़ादायक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने स्वयं कभी धूम्रपान नहीं किया लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आने के कारण बीमारियों का शिकार हो गए। श्रोताओं, आज की सबसे बड़ी चिंता युवाओं और किशोरों में बढ़ती निकोटीन की लत है। सोशल मीडिया, फिल्मों और विज्ञापनों के प्रभाव में बहुत से युवा तंबाकू को स्टाइल और कूल होने का प्रतीक मानने लगे हैं। आधुनिक ई सिगरेट और वेपिंग डिवाइस को आकर्षक रंगों और स्वादों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि युवा आसानी से इनके प्रति आकर्षित हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि कई देशों में किशोरों के बीच वेपिंग की दर वयस्कों की तुलना में कई गुना अधिक हो चुकी है। लगभग 1.5 करोड़ किशोर ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं और करोड़ों किशोर किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों के संपर्क में हैं। युवाओं को ये समझना होगा कि आत्मविश्वास तंबाकू से नहीं आता, सच्चा व्यक्तित्व अच्छे विचारों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली से बनता है। जो व्यक्ति गलत आदतों से दूर रहने का साहस रखता है वही वास्तव में मजबूत और जागरूक कहलाता है। श्रोताओं, तंबाकू का दुष्प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसका धुआं आसपास मौजूद लोगों तक भी पहुंचता है। इसे पैसिव स्मोकिंग या अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहा जाता है। घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग माता पिता, गर्भवती महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य भी उसी जहरीले धुएं को सांसों के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून बनाए गए हैं। साफ हवा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। श्रोताओं, तंबाकू केवल स्वास्थ्य ही नहीं आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। बहुत से लोग प्रतिदिन थोड़े थोड़े पैसे तंबाकू पर खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि ये मामूली खर्च है लेकिन यदि पूरे वर्ष का हिसाब लगाया जाए तो यही रकम हजारों और लाखों तक पहुंच जाती है। यही पैसा बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और

0: बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, समाज में जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं लगातार इस दिशा में कार्य कर रही हैं। इस वर्ष के अभियान में विशेष रूप से फ्लेवर वाले उत्पादों, आकर्षक पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और युवाओं को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे प्रचार पर चिंता व्यक्त की गई है। WHO ने देशों से अपील की है कि वे फ्लेवर आधारित तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएं, सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह धूम्रपान मुक्त बनाएं, विज्ञापनों पर नियंत्रण करें और लोगों को तंबाकू छोड़ने में सहायता प्रदान करें। श्रोताओं, अच्छी बात यह है कि तंबाकू की लत से बाहर निकलना संभव है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है एक मजबूत निर्णय की। जब व्यक्ति तंबाकू छोड़ने का फैसला करता है तो उसका शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में रक्तचाप सामान्य होने लगता है, कुछ दिनों में स्वाद और गंध की क्षमता बेहतर होने लगती है और समय के साथ गंभीर बीमारियों का खतरा कम होने लगता है। तंबाकू छोड़ने के लिए व्यक्ति कुछ सरल उपाय अपना सकता है। जब तलब महसूस हो तब पानी पिएं, गहरी सांस लें, टहलें या किसी सकारात्मक गतिविधि में स्वयं को व्यस्त रखें। योग और व्यायाम तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। परिवार और मित्रों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको तंबाकू छोड़ने में मदद की ज़रूरत है तो भारत सरकार की राष्ट्रीय तंबाकू निषेध हेल्पलाइन पर ज़रूर संपर्क करें। आप इस टोल फ्री नंबर 1-800-111-2356 पर कॉल करके विशेषज्ञों से पूरी तरह निशुल्क परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1-800-11-2356। प्रिय श्रोताओं, जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार, समाज और सपनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तंबाकू हमें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि जागरूकता हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करती है। इसलिए आज वर्ल्ड नो टबैको डे के अवसर पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम स्वयं तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। याद रखिए, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन है और तंबाकू से दूरी ही स्वास्थ्य की पहली शर्त है। इसी संदेश के साथ आज के इस लघु वार्ता को यहीं विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और जीवन को सकारात्मक दिशा दीजिए। नमस्कार।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे विशेष लघु वार्ता। वार्ताकार थे तेंजिन फुनचोग।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुरेंद्र कौर और आशा सिंह मस्ताना के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

सुरिंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना की गाई इस पंजाबी गीत के बाद सबरस कार्यक्रम में डीजे सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए दलेर मेहंदी का गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair

0: क्यों?
1: लव रंजन एक भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं। लव रंजन का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 सितंबर 1982 को हुआ था। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने एक लेखक और फिल्म निर्देशक के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखा।

वर्ष 2013 में लव रंजन ने आकाशवाणी फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म की पटकथा भी लव रंजन ने ही लिखी। लव रंजन ने प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, आकाशवाणी, तू झूठी मैं मक्कार, जय मम्मी दी, मलंग, दे दे प्यार दे 2 जैसी फिल्मों को दिया। और साथ ही दे दे प्यार दे, सोनू के टीटू की स्वीटी, लाइफ सही है जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया। आइए सुनिए दे दे प्यार दे 2 फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम में आज आपने सुने विख्यात निर्माता निर्देशक लव रंजन की फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 होने को हैं, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा।
1: Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।
3: हर

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ

उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ उनकी बेटी उनसे मिलने जाती ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ

0: जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और ख़ास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

0: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखीं, जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
1: बोल कहीं

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नुकोरी युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग की रवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री अस्नापुरपु एर्रय्या इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रय्या नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं.
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation.

0: in put into bat. Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण संपन्न होता है। कल के प्रसारण के साथ प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।